सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में

0: इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक तीन चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

उगता सूरज संदेश सुनाए, भारत माँ का मान बढ़ाए, सत्य सेवा प्रेम अपनाए, मिलकर राष्ट्र का गौरव गाएं, वीरों की कुर्बानी याद करें, ज्ञान कर्म और अनुशासन से जीवन को हम धन्य करें। हे मातृभूमि, तेरा सम्मान रहे सदा हमारे प्राण।

निराकार तू, निरंजन तू, हर कण में तेरा वास, नाम तेरा ही जीवन नैया, तू ही मेरी आस। मंदिर मस्जिद सब में तू है, तुझसे जग पहचान, तेरी कृपा से खिल उठता है जीवन का हर गान।

अंतर मन में दीप जला दे, मिट जाए अज्ञान, तेरे चरणों में शीश झुकाए, यही हमारी शान। हे प्रभु, अपनी शरण में रखना, देना सदा सम्मान।

सच्चा साथी, भक्तों का आधार, तेरी दया से जीवन महके, मिट जाए अंधकार, सत्य और सेवा का पथ देकर कर दे भव से पार।

हर धड़कन में तेरा ही नाम, हर सांस तेरा उपकार, तेरे बिना सूना सब लगता, तू ही जीवन सार। प्रभु रखना अपनी कृपा सदा, यही हमारी पुकार।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन आलेख आदित्य शर्मा और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का।
1: मनुष्य जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहन आंतरिक यात्रा भी है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य आत्मा की उन्नति अर्थात आत्मोन्नति है। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा से संबंधित ज्ञान और अनुभव। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है, तभी वह अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। यही मार्ग उसे आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। आत्मोन्नति का अर्थ है अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, न केवल बाहरी रूप से बल्कि मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी। आज के आधुनिक युग में मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतना अधिक भाग रहा है कि वह अपने आंतरिक विकास को भूलता जा रहा है। परिणाम स्वरूप तनाव, असंतोष और अशांति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में अध्यात्म ही वह साधन है जो मनुष्य को सच्चे सुख और संतुलन की ओर ले जाता है। अध्यात्म का पहला चरण है आत्मचिंतन। जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करता है, तब उसे अपनी कमजोरियों और शक्तियों का ज्ञान होता है। यह ज्ञान आत्मोन्नति की दिशा में पहला कदम है। आत्मचिंतन से मनुष्य यह समझ पाता है कि उसे किन आदतों को छोड़ना है और किन गुणों को अपनाना है। इस प्रकार वह धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है आत्मानुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। अध्यात्म हमें सिखाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, समय का सदुपयोग कैसे किया जाए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रहा जाए। जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन लाता है, तब उसका मन स्थिर होता है और वह अपने उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। अध्यात्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और योग। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित ध्यान और योग से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मोन्नति की प्रक्रिया को तेज करता है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने अहंकार को त्यागें। अहंकार मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाता है, तब वह दूसरों से सीखने के लिए तैयार होता है। यह सीखने की प्रवृत्ति ही उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। विनम्रता से व्यक्ति के संबंध भी बेहतर होते हैं, जिससे उसका सामाजिक और मानसिक विकास होता है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म सेवा और करुणा का भी पाठ पढ़ाता है। जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है और उसके दुख दर्द को समझता है, तब उसके भीतर मानवता का विकास होता है। यह भावना उसे आत्मसंतोष और आनंद प्रदान करती है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करता है। आत्मोन्नति के लिए सकारात्मक सोच भी अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब मनुष्य नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है, तब वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। यह संतुलन ही उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से

0: मनुष्य को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आ जाता है। वह यह जान पाता है कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्मा के विकास के लिए है। यह समझ उसे अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है तब उसे मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। अंततः अध्यात्म से आत्मोन्नति की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह कोई एक दिन या एक समय में पूर्ण होने वाला कार्य नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अध्यात्म आत्मोन्नति का आधार है। यह मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, अपने दोषों को सुधारने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। आज के युग में जब बाहरी चकाचौंध में मनुष्य भटक रहा है, अध्यात्म ही उसे सही मार्ग दिखा सकता है और सच्चे सुख की प्राप्ति करा सकता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख आदित्य शर्मा का, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें। विषय है मृदा परीक्षण और वाचक स्वर प्रेरणा पहारे का।
2: सभी भाई बहनों को स्वागत छे। न आज आपका साथ में छे आपकी बहन प्रेरणा पहारे, तो स्वीकार करो हमारे राम राम। भाई बहन, आज अपन बात करांगा मृदा परीक्षण से जुड़ेल। कोई भी फसल लगाना का पहला खेत की तैयारी में सबसे पहलो जरूरी काम छे खेत की माटी को परीक्षण। फसल की अच्छी पैदावार का लेना मिट्टी परीक्षण बेहद जरूरी छे। हमारा खेत की माटी में किन्हा पोषक तत्व की कमी छे ये जानना का लेना मृदा परीक्षण एकमात्र सुरक्षित विकल्प छे। भाई बहनों, मृदा परीक्षण से खेत की वास्तविक उर्वरक क्षमता न माटी को पीएच मान मालूम होएगा, जेका से किसान भाई बहन फसल की जरूरत का अनुसार खाद न उर्वरक न को चयन करेगा, जेका से फसल की पैदावार बढ़ी सकज न अनावश्यक लागत में भी कमी आवेगा। एका लेना रवि की कटाई का बाद में न खरीफ की बुआई का पहला मज माटी परीक्षण जरूर से करा लेवा। मृदा परीक्षण से मिट्टी में पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, पीएच मान, कार्बन लवणता सभी की जानकारी एक बार में मिली जाएगा। ये तो बात करी अपन न कि मृदा परीक्षण काई छे न क्यों जरूरी छे, अमा मृदा परीक्षण किन्हा प्रकार से करा। तो मृदा परीक्षण का लेना सबसे पहले तो खेत में सही स्थान को चुनाव करा। खेत की मेड़, पेड़ न की छाव, खाद को ढेर या पानी जमना वाली जो जगह न छे उनका छोड़ी देवा न पूरा खेत में वी आकार का कम से कम 8 से 10 गड्ढा तैयार कर लेवा। खुरपी न फावड़ा की सहायता से इनमें गड्ढा की एक दीवार से 0 से 7 इंच तक, कहने को मतलब छे कि 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी 3 बार ऊपर से नीचे तक एक समान छिली न निकाला। ये सभी गड्ढा न एक समान इन्हा प्रकार से मिट्टी निकाला। सभी जगह न की मिट्टी का एक साथ साफ बाल्टी या पन्नी में इकट्ठी कर लेवा न एकामासी कंकड़ पत्थर या घास फूस जो भी हो उनका सबका अलग कर देवा। न अमा मिट्टी का अच्छा से मिलाना का बाद में इनका 4 भाग में एक हिस्सा करा। न आमना सामना वाला 2 हिस्सा का हटाई देवा, न बचा हुआ हिस्सा का एक बार फिर से मिलाई लेवा। न ई प्रक्रिया तब तक करा जब तक की मिट्टी जो छे 500 ग्राम या आधा किलो तक मिट्टी नहीं बची जाए। अब एक बाद में मिट्टी का कपड़ा की थैली में अच्छा से पैक कर लेवा न ओका पर अपनो नाम, मोबाइल नंबर, पता, खेत को नंबर, खसरा नंबर या जो भी फसल आप बोगा उको नाम लिखे न लेब में जांच कर लेना भेजा। जांच में आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा जेका में मिट्टी का पोषक तत्व जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, आयरन जैसा पोषक तत्व की मात्रा आपका मालूम पड़ेगा न साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, मिट्टी को पीएच मान, ओके लवणता सभी की सटीक जानकारी आपका मिलेगा। इन आधार पर कृषि वैज्ञानिक ने की सलाह का अनुसार अपना खेत में बोई जा रही फसल में सही मात्रा में उर्वरक न खाद डाले न फसल की पैदावार अपन बढ़ाई सकांज। तो आज का लेना इतरोज कहनो अच्छे हमारे भाई बहन नसी। आज्ञा देव आपकी बहन प्रेरणा पहारे का, राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें। विषय था मृदा परीक्षण और वाचक स्वर प्रेरणा पहारे का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर रविन्द्र साठे का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 सुनिए खेल पत्रिका कार्यक्रम। 9:00 लोक संगीत में कलाकार हैं देवीलाल भैरूजी बुराना। और 9:15 पर सुगम संगीत में सुनिए रूप कुमार राठौर को। 9:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए विदुषी श्रुति साडोलिकर का गायन राग है बहादुरी तोड़ी। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे 11:00। इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। 12:00 सुनिए फिल्म संगीत और 12:30 पर होगा संग्रहालय से प्रोग्राम। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। आप सुनेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर जानकारी। रूम प्लावण में जानिए घर पर बनाए फेसपैक। मेरी उड़ान क्रम में स्टेज शो आर्टिस्ट सिंगर हेमा मछिया से सुषमा व्यास की बातचीत होगी। फूड जोन में कुरकुरा पालक कॉर्न रोल्स। काम की बातें में जानिए घर पर रखी दवाइयों की एक्सपायरी डेट जरूर देखें। 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का प्रोग्राम। 2:00 होगा फिल्म संगीत और 2:30 पर हम लेकर आएंगे आपकी फरमाइश। शाम की सभा में 5:00 युवा साथियों के लिए प्रोग्राम होगा युवाणी। आज के क्रम में जानिए हमारे शहर सतना के बारे में। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत और 6:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुगम संगीत में 6:30 पर कलाकार हैं रूप कुमार राठौर। लोक संगीत में कलाकार हैं देवीलाल भैरोजी बुराना। समय होगा 6:45। शाम 7:20 पर रोज की तरह खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर सुर्खियों में भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा और 8:30 होगा फिल्म संगीत का प्रोग्राम। 9:15 पर सुनिए चित्रगीत और 9:30 उर्दू कार्यक्रम का कशा हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन। रात्रि 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए विदुषी श्रुति साडोलिकर का गायन राग है नायकी कन्नड़ा। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: करणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः चतुर्दश दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदक तालिकायां एकं स्वर्ण पदकं, त्रीणि रजत पदकानि, एकं कांस्य पदकं च एवं आहत्य 5 पदकानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: और आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की।
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: श्रोताओं, आपको बता दें 10:05 पर सुबह आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें आप हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के फिल्मी नगमे। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो फ़ोन करना बिल्कुल ना भूलें और सुनिए अपने पसंद के फिल्मी नगमे सुबह 10:05 से। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कोचीपलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापकों से मुलाकात, विक्रम वन मिशन की सफलता पर दी बधाई। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज शुभारंभ, मुख्यमंत्री दिखाएंगे मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 29 जुलाई को उज्जैन में करेंगे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अगुवाई, प्राचार्यों का करेंगे सम्मान। और भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक होगी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग, कई देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अग्रणी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापकों पवन चंदाना और नगा भारत डका से मुलाकात की। इस मुलाकात में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए स्काई रूट के विक्रम वन मिशन की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कंपनी के संस्थापकों का उत्साह और दृष्टिकोण भारत के तेजी से विकसित हो रहे निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह क्षेत्र आने वाले समय में वैश्विक पहचान बनाएगा। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यहां मालवा एक्सप्रेस के अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज होगा। कल प्रदेश के खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने तैयारियों को जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। नरेला विधानसभा क्षेत्र में बना यह स्टेशन करीब 3 साल पहले तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक यहां से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका था।
1: बहुत सालों से जिस दिन का इंतजार था वो 28 जुलाई को पूरा हो रहा है और निषादपुरा का हमारा बहु प्रतीक्षित रेलवे स्टेशन अब ऑपरेशनल स्थिति में आएगा। 28 तारीख को, 28 जुलाई को शाम को 5:30 बजे मालवा एक्सप्रेस यहां पर ऑफिशियली रुकना शुरू होगी और 2 महीने तो वो भोपाल से चलेगी और आगे जो इंदौर की तरफ जाने वाली ट्रेन है वो निषादपुरा से ही शुरू होंगी। ये हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य अतिथि में 29 जुलाई को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को सम्मानित करेंगे। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे और स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो 2026 में प्रदेश को एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि 25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित इस एक्सपो में देश विदेश के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जानकारी दी कि कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के बीच मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी को नवाचार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान मिला है।

0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल उमरिया जिले के गांव मरदरी स्थित उमरार नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित पूजन अर्चन एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नदियों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चिंता है। इसे एक व्यापक जन आंदोलन बनाना होगा। जल स्रोतों को सहेजने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने 3 अभियान चलाए कि हर बूंद का आप संरक्षण करें, वर्षा जल को जमीन के भीतर डालें, और जलगंगा अभियान की शुरुआत भी इसलिए की थी कि हमारे नदी को जल स्रोत वो स्वच्छ भी होने चाहिए और वो जीवंत भी होने चाहिए। एक बड़ी गलती हमने की है कि नदियों को अपने प्रदूषित किया, इसलिए उन्हें स्वच्छता की बात की। दूसरा, हमने वृक्षों की कटाई की या नदियों के स्रोतों को की चिंता नहीं की, तो उनकी क्षमता में कमी आई है। उसके क्षमता वर्धन का एक ही रास्ता है कि हम वहाँ पौधे लगाएं, और एक पौधा माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया।
0: भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस अवसर पर दी जाएंगी। ये जानकारी भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कल कमिश्नर कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा बैठक में दी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 अगस्त को मिंटो हॉल में तकनीकी समितियों की बैठकें होंगी। वहीं 6 अगस्त की शाम रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होगा। इसके बाद 7 और 8 अगस्त को भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कल मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के उन्नयन और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि ये विस्तार पर्यटन के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और जनजागरूकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विद AI के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 सुशासी महाविद्यालय शामिल हैं। ये कोर्स IIT दिल्ली के सहयोग से संचालित होगा और विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से निशुल्क रहेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस कोर्स के जरिए 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को कल संबोधित किया। उन्होंने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ा पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान वन विहार में चल रहे बाघ सप्ताह के तहत कल विद्यार्थियों के लिए बाघ विषय पर पाम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 से 28 जुलाई तक बाघ सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत भोपाल के स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में महिला शॉटपुट 57 फाइनल जीतकर देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। 5वें दिन तक भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है। शर्मिला ने 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पैरा एथलेटिक्स में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण विजेता बनने का इतिहास रचा। वहीं इसी स्पर्धा में शिल्पा के शायला ने कांस्य पदक जीता और भारोत्तोलन में वल्लूरी अजय बाबू ने 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं ज्ञानेश्वरी यादव और विंध्या रानी ने भी क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ समेत 2 सिस्टम सक्रिय होने से कल कई जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज के लिए सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के शासकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित MRI केंद्र का लोकार्पण किया। झाबुआ में कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने समीक्षा बैठक लेकर लंबित कार्यों और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रस्तावित थानला प्रवास की तैयारियों का जायजा लिया। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कटनी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष तिवारी ने ओवरलोडेड वाहनों, स्कूल बसों और बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। आइए आप सुनते हैं प्रोग्राम सुनहरे पल।

सुनहरे पल के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। दोस्तों, हिंदी सिनेमा को स्वर्णिम 90 के दशक की बात करें और मासूम मुस्कान, चुलबुली अदाओं वाली और सहज अभिनय का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस अभिनेत्री की जिसने अपनी सादगी और अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री आयशा चुल्का की। 20 जुलाई 1972 को श्रीनगर में जन्मी आयशा चुल्का, जब बड़े पर्दे पर उन्होंने कदम रखा तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि उनकी मुस्कान लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगी।

श्रोता, 1991 में आई उनकी फिल्म कुर्बान अभिनेत्री आयशा जुल्का की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान मुख्य भूमिका में थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया। फिल्म के गाने की शूटिंग इगतपुरी के पास रेलवे ट्रैक पर चल रही थी। यूनिट को भरोसा दिया गया था कि उस समय कोई ट्रेन नहीं आएगी और आयशा जुल्का ट्रैक पर रिहर्सल कर रही थी। तेज म्यूजिक चल रहा था, अचानक सलमान खान के पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज़ उन्होंने सुनी। उन्होंने बिना वक्त गवाए आयशा को इतनी तेजी से ट्रैक के पीछे खींचा कि वो गिर गईं, पर कुछ ही पलों में वहां से ट्रेन गुजर गई और उनकी जान में जान आई। इस तरह से ये शूटिंग हुई। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं।

0: लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: श्रोताओं, कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि नई पीढ़ी उन्हें अपना लेती है। पहला नशा भी ऐसा ही गीत है। इस गीत में प्रेम की मासूमियत है, सपनों की उड़ान है और युवावस्था की धड़कनों की मिठास है। बड़े पर्दे पर आयशा जुल्का की सहज मुस्कान और सरल अभिनय ने इस गीत को एक अलग ही पहचान दी। 90 के दशक का हिंदी सिनेमा का यह दौर स्वर्णिम दौर माना जाता है और उस दौर में आयशा जुल्का ने अपने अभिनय से ये साबित किया कि बिना किसी बनावटी अंदाज के भी दर्शकों के दिल में जगह बनाई जा सकती है। तो याद करते हैं हम जो जीता वही सिकंदर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अब हम बात करते हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ी की। इस फिल्म में उनके कैरियर को नई ऊंचाइयां दी। रोमांच, रोमांस और संगीत से भरपूर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और अक्षय कुमार, आयशा जुल्का की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आयशा चुल्का की मासूम अदाकारी ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ। उनके चेहरे के सहज भाव, आंखों की सादगी और बिना किसी बनावटीपन के किया गया अभिनय गीत की आत्मा बन जाते थे, जिसे उन्होंने घर घर में पहचान दिलाई और 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। उनके निभाए किरदार आम लड़कियों की तरह सहज, संवेदनशील और जीवंत लगते थे। यही वजह है कि दर्शकों ने उन्हें केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि अपनेपन से जुड़ी एक कलाकार के रूप में स्वीकार किया।

श्वेता आयशा चिल्का का फिल्मी सफ़र बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन जितना रहा उतना बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि अपने किरदार को कभी अभिनय नहीं बल्कि जीवन की तरह विजीती थीं।

श्रोताओं, सफलता, लोकप्रियता और सम्मान, ये सब कलाकार के जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा कायम रहती है वो है दर्शकों का प्यार। आयशा जुल्का ने अपनी सादगी, शालीनता और बेहतरीन अभिनय से यही प्यार कमाया। आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार की ओर से हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब ये प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार।

0: मेरे पल।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुनहरे पल, यह आकाशवाणी गंदौर केंद्र है। 8 बजने को है, अब समाचार होंगे।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम-1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम-1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम-1 की सफलता की सराहना की थी।
6: विक्रम-1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
7: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ

0: कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन

0: सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर

श्रोताओं, खेल पत्रिका प्रोग्राम में आपका स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान। श्रोताओं, खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। मैदान पर उतरने वाला हर खिलाड़ी हमें यह सिखाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। श्रोताओं, इन दिनों पूरी दुनिया की नजर स्कॉटलैंड ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 पर है। भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, तैराकी और अन्य स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हर पदक के साथ भारत का तिरंगा नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और देशवासियों की उम्मीदों भी लगातार बढ़ रही हैं। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की झोली में कई महत्वपूर्ण पदक आए हैं, जिससे भारत की पदक तालिका 10 तक पहुंच गई है।

श्रोताओं, भारत की स्टार पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की F57 शॉट पुट गोला फेंक स्पर्धा में 9.81 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स इतिहास में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

की कप्तानी में युवा भारतीय टीम ने हरारे में खेले गए T20 मैचों में जिम्बाब्वे को लगातार शिकस्त देकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाई है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के संयमित और विस्फोटक 81 रनों की बदौलत भारत ने इस स्कोर को जीता। सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया और ये अजेय बढ़त दिलाई है।

श्रोताओं बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। भारत के स्टार वेटलिफ्टर मीनाबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड तोड़ कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके अलावा ज्ञानेश्वर यादव, बल्लूरी अजय बाबू और ऋषिकांत सिंह ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते, जबकि विंध्या रानी देवी और शिल्पा के शाइला ने कांस्य पदक प्राप्त कर भारत का परचम लहराया है।

श्रोताओं, भारत की निशानेबाज ईशा सिंह ने सोमवार को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीता। हमवतन खिलाड़ी मनु भाकर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। मनु ने कांस्य पदक जीता और भारत ने इस तरह से इस स्पर्धा में 2 पदक हासिल किए। 21 वर्षीय ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 अंक बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेलों की दुनिया लगातार बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपियाड में शामिल किए जाने की तैयारियां तेज हैं और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हमारे भारतीय खिलाड़ी लगातार इसी तरह का प्रदर्शन करते रहे हैं और करते रहेंगे, और हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे खेल पत्रिका। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं।

0: आप सुन रहे थे देवीलाल भैरव जी बुराना के स्वर में ये मालवी लोकगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज कलाकार थे देवीलाल भैरव जी बुराना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं रूप कुमार राठौर।

आप सुन रहे थे गुलजार की शब्द रचना, संगीत उस्ताद अमजद अली खां का और आवाज़ रूप कुमार राठौर की।

आप सुनाए थे गुलजार का लिखा ये कलाम, संगीत उस्ताद अहमद अजमत अली खां का, और इसे एक बार फिर सुन लीजिए उस्ताद अमजद अली खां का, और आवाज़ रूप कुमार राठौर की थी।

आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज़ में गुलजार की शब्द रचना, संगीत उस्ताद अमजद अली खां का। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं वेदुषी श्रुति साडोलिकर का गायन, राग है बहादुरी दूड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं यूसुफ खां और सारंगी पर मोइनुद्दीन खां।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी श्रुति साडोलिकर का गायन राग था बहादुरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे यूसुफ खां और मोइनुद्दीन खां सारंगी पर। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: जिले की चिट्ठी
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है। पन्ना जिले की चिट्ठी, आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात श्री जुगल किशोर महोत्सव की। श्री जुगल किशोर मंदिर में आयोजित इस महोत्सव में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वृंदावन से आए संत राजेंद्र दास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा और रसिकाचार्य महंत स्वामी किशोर दास जी महाराज ने भक्तमाल कथा का वाचन इस अवसर पर किया। इस महोत्सव में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रावतपुरा सरकार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना पहुंचकर भगवान

0: दिल किशोर के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस महोत्सव को हर साल आयोजित किया जाएगा ताकि पन्ना को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पन्ना दौरे के दौरान 184 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से पन्ना में शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर के विकास के लिए पर्याप्त बजट देने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पन्ना जिले में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाए गए गौ सम्मान आह्वान अभियान को लोगों का बड़ा समर्थन मिला है। इस अभियान के तहत 2,71,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। इन हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इसमें गौवंश की सुरक्षा और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। पन्ना शहर में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उषा परमार ने यह आदेश यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया है। अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पन्ना जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में मुख्य डाकघर तिराहे पर बीते दिनों बाहर से आने वाले दुग्ध विक्रेताओं के दूध के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। पन्ना जिला न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते दिनों आयोजित किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा, ई कोर्ट सेवाओं और डिजिटल न्याय प्रणाली की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने वॉलंटियर्स से गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। पन्ना जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीते दिनों सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, आयुष विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किए। दक्षिण पन्ना वन मंडल ने 100 साल से ज्यादा पुराने 1,353 पेड़ों का रिकॉर्ड तैयार किया है। इनक्रेडिबल ट्रीज ऑफ साउथ पन्ना नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इसका विमोचन बीते दिनों किया। सभी पुराने पेड़ों की जियो टैगिंग और फोटोग्राफी भी की गई है। इसका उद्देश्य जिले की प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी जानकारी को पहुंचाना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पन्ना की शाहनगर ग्राम पंचायत ने कचरे से कंचन मॉडल अपनाकर नई मिसाल कायम की है। इस पंचायत में घर घर से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। जैविक खाद बनाकर पंचायत ने सबसे ज्यादा आय अर्जित की है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरपंच मनोज जैन को सम्मानित किया। पंचायत का ये मॉडल अब दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। पन्ना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में रैली, शपथ और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को नशे के नुकसान बताए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले महीने 3 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों की टीम मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। लगातार हुई इन घटनाओं ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देश में बाघ संरक्षण के लिए खास पहचान रखता है। पन्ना जिले के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और खेल विभाग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अलग अलग खेलों के लिए नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पन्ना जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। और ये वक्त है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। तो आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। हमारा प्रोग्राम की हम शुरुआत करें इसके पहले हमारे फ़ोन नंबर्स बता दें 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीटी कोड है 0731। हमारे नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर्स जानना ज़रूरी है। आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और देखते हैं हमारे पहले कौन से कॉलर आज हमसे मुखातिब हो रहे हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से।
0: शिमला से बात कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह से आप बात कर रहे हैं। अभी इस समय तो बहुत अच्छा मौसम होगा वहाँ राकेश जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है और बरसात भी चल रही है, तो इस समय जो है मौसम ठीक है। 28 डिग्री तक जो है, 25-26 डिग्री तक तापमान हमारे इधर है।
0: जी जी, एक बहुत अच्छा नेचुरल प्लेस है, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा माहौल वहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा।
1: जी जी जी जी
0: जी। और वहाँ आप रहते हैं शिमला में?
1: जी, शिमला में मैं रहता हूँ कि वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ हमारा घर भी वहाँ है। और शिमला जिले की कोट खाई में मैं रहता हूँ और हम उधर क्या बोलते अपनी जो है बागवानी करते हैं। अभी हमने परसों 2 दिन पहले सेब तोड़े, सेब की खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बागवानी खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जो हमारी खेती बाड़ी रहती है।
0: अरे वाह, एप्पल की खेती करते हैं आप?
1: जी, एप्पल की खेती करते हैं क्योंकि हिमाचल के जो सेब है बड़े मशहूर है और पूरे भारत में पहुंचते, शायद आप तक भी पहुंचते होंगे।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतनी अच्छी जगह आप रह रहे हैं और सेब का उत्पादन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कब से रह रहे हैं आप शिमला में?
1: मैं तो बचपन से शिमला में रहता हूँ, हमारा पूरी फैमिली यहीं रहती है, हमारा हमारा जन्म स्थान भी यहीं है शिमला, शिमला में।
0: जी जी जी।
1: कुछ लोग होते ना, जैसे कई बार जैसे कि कई श्रोता सोचे कि हिमाचल से कॉल नहीं आता ना, तो किसी भी श्रोता का, तो वो सोचे कि शायद शिमला घूमने गएंगे, तो
0: जी जी जी जी जी जी। चलिए, आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज मुझे गाना सुनना, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि बरसात का सीजन चल रहा है, तो
0: जी जी
1: एक गाना आ रहा है साजन सागर, सावन आया बादल छाया।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। आप
1: जी जी जी
0: सुनिए ये गीत, सावन आया बादल छाए, जो आपने पसंद किया है। धन्यवाद शिमला से फोन करने के लिए आपको।
1: जी जी, धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना
0: जी,
1: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बात कर रहा है बहन जी।
0: मांगीलाल चंदेल जी बात कर रहे हैं गुना से?
1: जी जी
0: जी जी, स्वागत है आपका MH हॉटलाइन प्रोग्राम में
1: जी।
0: और बताएं आप कैसे हैं?
1: मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ
0: जी। मैं माजिदा खान बात कर रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। आपको बढ़िया कार्यक्रम पेश कर रही हैं, आपको धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। और क्या जी पसंद है आज आपकी?
1: मेरी पसंद फिल्म का नाम बेताब
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, रस्ता है दर्द भी ऐसा लगता है, चमक चमक के ये बिजली हम पे गिर जाए ना।
0: जी जी, शब्बीर कुमार की आवाज़ में गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और आप रेडियो सुनते हैं, मोबाइल ऐप पर?
1: नहीं, मैं रेडियो पे ही सुनता हूँ।
0: रेडियो पर ही सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है जी।
1: जी देखो, आप तो मेरे हिसाब से अभी नई नई होंगी, अभी 2-5-10 साल में आई होंगी स्टूडियो, लेकिन हम तो इंदौर को 1980 से सुनते आ रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप बहुत पुराने समय से रेडियो से जुड़े हुए हैं जी।
1: लिसनर है हम
0: जी, जी, जी।
1: हमारे साथ की जो अनाउंसर है वो सब रिटायर हो गए, एक
0: जी,
1: भी
0: जी,
1: नहीं है, कोई नहीं है
0: जी जी जी।
1: शर्मा जी हैं, वो गुना आ गए
0: जी,
1: वो गुना आ ही गए हैं। मेरे हिसाब से कुछ 1-2 अनाउंसर बचे होंगे, और सुधा शर्मा जी, बिनकी भी आवाज सुनाई दे
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: उदित तिवारी जी भी नहीं है
0: जी,
1: विद्याधर मोले जी भी नहीं है, तमाम सब रिटायर हो गए बहन जी।
0: जी जी, मोले सर हैं अभी दूसरे केंद्र पर, हमारे वो इस समय काम कर रहे हैं।
1: तो दूसरे अनाउंसर
0: जी जी जी, बाकी जो आप बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिटायर्ड हो गए हैं। और आपने जो गीत पसंद किया है मैं आपको सुनवा रही हूँ।
1: कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल, कर लीजिए।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, और
0: जी
1: अभी कॉल शिमला से आया था राकेश जी का,
0: बिल्कुल
1: वो भी यही गाना सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा,
1: इन सभी को गाना। और एक हैदर खान जी हैं रतलाम से, प्रेमलागंज आलोड से बलवंत कुमार वर्मा जी हैं, इन सभी को ये गाना दे दी।
0: चलिए आप के सारे दोस्तों के साथ आप सुनिए ये गीत अपने रेडियो सेट पर
1: जी।
0: नमस्ते
1: जी।

0: श्रोताओं, हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद पुनः उपस्थित होते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इस समय आप है हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो।
5: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
5: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, जी बताएं लोकेंद्र जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: गाना तो मैडम जी पुराने फिल्मों के शौकीन है, गीतों के सुनने के
0: जी।
5: और आज तो काफी दिनों के बाद में आपके प्रोग्राम में जुड़ा हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा,
5: मेरा हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है
0: जी,
5: तो मंगलवार के दिन छुट्टी रहती है, तो आज कोशिश कर रहा था आपके प्रोग्राम में फोन लग गया मैडम।
0: जी जी जी बिल्कुल जी, स्वागत है, बताएं।
5: उज्जैन में महाकालेश्वर जी की नगरी है, अभी ये सावन माह शुरू होने वाला है
0: जी।
5: और उज्जैन में अब मतलब पूरे माह बहुत से तीर्थ यात्री

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: अशोकनगर एमपी से? जी बिल्कुल, बताएं कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम।
0: और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है दीवाना और उसमें एक गाना है पायलिया, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे। क्या आपको कुमार सानू के गाए गीत ही पसंद आते हैं या और भी गायकों के गीत पसंद हैं आपको?
1: हाँ, मुझे खास तौर पर कुमार सानू, अलका याग्निक और नए गानों की बात करें तो अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, राहत फतेह अली खान और
0: अच्छा,
1: सब तरह के गाने सुनते रहते हैं।
0: जी, ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना का गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो,
1: नमस्कार दीदी। आपको
0: नमस्ते।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से बात कर रहे हैं। जी
1: जी,
0: स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: और वाराणसी में कैसा मौसम है?
1: दीदी बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ, एकदम सावन की तरह हो ही गया है।
0: जी
1: जबकि
0: जी
1: अभी
0: जी
1: सावन आने में 2 दिन है, लेकिन सावन की तरह मौसम हो गया है।
0: अच्छा।
1: यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है ना। हाँ, तो मौसम बढ़िया हो गया है।
0: अच्छा, खैर वाराणसी नगरी की तो बात ही कुछ और है।
1: जी दीदी, और इस
0: जी
1: समय कांवड़ियों की भीड़ भी आ रही है,
0: बिल्कुल, सावन के
1: तो
0: महीने में तो
1: और
0: ये
1: बढ़िया हो
0: रहता
1: गया
0: ही
1: है।
0: है
1: जी
0: जी, और बढ़िया लग रहा है ना।
1: जी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है
0: जी अच्छा, आप आपकी पसंद बता दें।
1: दीदी। हमको सावन का गाना सुनना है,
0: जी
1: तो एक गीत सावन का है जो जुर्माना में,
0: जी
1: सावन के झूले पड़े तुम चले आओ।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत जो आपने पसंद किया है जुर्माना फिल्म से।
1: जी
0: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का
1: नमस्कार
0: गीत।
1: दीदी आपको।
0: नमस्ते।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए देखते हैं हमारे अगली कॉलर कौन है। हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम बताएं।
3: मैं राजूलाल मेहर, गांव भिलवाड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान से।
2: झालावाड़ राजस्थान से बात कर रहे हैं
3: जी।
2: भिलवाड़ा से?
3: हाँ, भिलवाड़ा, भिलवाड़ी गांव है, भवानी मंदिर रोड पे।
2: अच्छा,
3: और नदी के किनारे है ये दो गाँव।
2: अच्छा अच्छा, नदी के किनारे आपका गांव है तो बड़ा ही अच्छा लगता होगा।
3: हाँ,
2: खूबसूरत लगता।
3: हाँ, बढ़िया लगता है।
2: हाँ। और क्या करते हैं आप?
3: खेती बाड़ी भी करते हैं, कारीगरी का काम भी करते हैं।
2: अच्छा, क्या कारीगरी का काम करते हैं आप?
3: मकान वकान बना लेते हैं।
2: अच्छा, मकान बनाने में कारीगरी का काम। हाँ, करते हैं जी।
3: तो हमारे यहाँ क्या ये कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां हैं और खाने भी हैं।
2: अच्छा जी,
3: आस पास में। तो वहाँ से पत्थर भी मिल जाता है।
2: हाँ।
3: और सैंड स्टोन बिकी भी है यहाँ खाने
2: जी।
3: हाँ। और कोटा स्टोन दोनों पत्थर मिल जाते हैं।
2: अच्छी अच्छी बात है जी, इसलिए आप ये काम कर पाते हैं।
3: जी सर,
2: कौन सी गीत की फरमाइश है आज आपकी?
3: आज सुना देना याराना, बोले वो बोले।
2: बोले वो बोले जी, बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे। फिल्म याराना का गीत जो आपने पसंद किया है, सुनिए।
3: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: एमएच हॉटलाइन। बिल्कुल, आपने एमएच हॉटलाइन में ही फोन लगाया है। स्वागत है आपका।
1: जी मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, शिफा कॉलोनी खंडवा से।
0: जी,
1: और
0: यूनुस खत्री
1: आज
0: जी।
1: एक बार आपको फिर से हम लेकर आए गए हैं हमारे धुनी वाले दादाजी की नगरी में, जहाँ
0: जी
1: अभी गुरु पूर्णिमा का मेला चल रहा है।
0: अच्छा।
1: लावे आपको घुमा रहे हैं, ये भंडारे लग चुके हैं, प्रसादी शुरू हो गई है और बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ,
0: गुरु
1: ये देखने
0: पूर्णिमा
1: लायक
0: पर।
1: माहौल
0: जी
1: रहता है। गुरु
0: जी जी
1: पूर्णिमा
0: जी
1: जी अभी 3 दिन तक चलेगा ये,
0: अच्छा, कुछ विशेष
1: 28
0: रहता है
1: उनतीस
0: जी।
1: बत्तीस जी हाँ, ये धुनी वाले दादाजी की नगरी है ना ये।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हर
1: जी,
0: साल
1: ज्यादा
0: ही
1: मतलब
0: ये
1: हाँ
0: रहता है
1: जी
0: जी।
1: जी जी बस, तो इसलिए मतलब जो है ना यहाँ पर बहुत 300 करीब करीब 300 पंडाल लगते हैं अपने भंडारे के,
0: जी
1: सब
0: जी
1: फ्री रहता है बिल्कुल, यहाँ से वहाँ तक, इस कोने से उस कोने तक,
0: हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं,
1: बहुत
0: और अब
1: बहुत बढ़िया
0: बहुत
1: रहता
0: अच्छी
1: है
0: बात है ये जी।
1: जी। मैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब जब दूर दूर से लोग आते हैं, मुलाकातें भी होती है, और जब
0: हाँ,
1: सब अपनी नगरी का नाम चलता है, अपने नगर का नाम चलता है, तो
0: बहुत
1: खुशियां
0: अच्छा
1: भी
0: लगता
1: होती
0: है
1: हैं।
0: जी।
1: जी जी जी
0: जब
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: बिल्कुल
0: नगरी हर
1: बिल्कुल
0: जगह फेमस होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: सही बात
0: सही
1: है ना,
0: कह रहे हैं
1: बिल्कुल
0: आप जी,
1: बिल्कुल। तो इसलिए मतलब सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप सब आके बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: आओ,
0: जी
1: तब
0: जी
1: समान
0: जी
1: छोटा, और आज उसी का नाम है बदलो दादाजी का नाम, बस और क्या,
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप किस तरह से भागीदारी
1: अरे
0: करते हैं इस प्रोग्राम में?
1: मतलब क्या है, बस इसमें जहाँ जिसकी हमारे दोस्तों में जाते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है, ये
0: उसका
1: गाना
0: सहयोग
1: बजाना
0: कर
1: है
0: देते हैं
1: अपना,
0: जी जी जी
1: सहयोग जो जो चीज की सहयोग लगता है करते रहते हैं
0: बिल्कुल, बहुत
1: दोस्तों
0: अच्छी
1: में, इनमें
0: बात
1: और
0: है
1: में,
0: जी,
1: और क्या, अपने
0: बिल्कुल
1: देश की
0: बहुत
1: पहचान है ये,
0: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी संस्कृति को
1: बिल्कुल
0: मनाए रखना और हर किसी को
1: जी
0: सहयोग करना, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: बहुत
0: आप ये
1: अच्छी
0: काम
1: बात
0: कर
1: है,
0: रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और अभी कौन सा गीत
1: बिल्कुल।
0: सुनना चाहते हैं
1: और आकाशवाणी परिवार भी अपना ही है,
0: जी?
1: आकाशवाणी परिवार भी अपना ही है। हाँ,
0: बिल्कुल है
1: आकाशवाणी परिवार तो हमारा अपना परिवार है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसको
0: सही कह
1: क्यों
0: रहे
1: हम
0: हैं
1: भूल
0: आप,
1: सकते हैं,
0: बिल्कुल सही कह
1: उसको
0: रहे
1: तो
0: हैं आप।
1: भूलते ही नहीं है
0: हम आप श्रोताओं को भी नहीं भूलते हैं,
1: जी
0: और हमेशा आप
1: जी
0: हमारे साथ होते हैं हर प्रोग्राम में
1: आज
0: हर
1: मुझे
0: वक्त जी
1: बिल्कुल, आज मुझे पत्थर की धन फिल्म का गीत सुना दीजिए,
0: जी
1: टाइटल सॉन्ग,
0: बिल्कुल, मैं
1: और
0: आपको सुनाती
1: कल
0: हूँ
1: के सनम
0: जी, गुनगुना दीजिए बिल्कुल।

0: हेलो हेलो।
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान है। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: वाह वाह, क्या खूबसूरत लाइन है आप।

0: पेश की। जी, अब आपका शुभ नाम हम जान सकते हैं?
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, आहूजा जी उदयपुर से बात कर रहे हैं।
1: जी
0: उदयपुर में क्या फेमस है, क्या क्या चीजें?
1: मैडम, वैसे तो कहा जाए तो जिलों की नगरी है तो
0: जी
1: जिले ही फेमस
0: बिल्कुल,
1: है,
0: ये तो सबसे अच्छी बात है जी।
1: पहाड़ी इलाका भी है, पर्वतीय,
0: जी,
1: जो बहुत ही अपने आप में बेहद खूबसूरत है,
0: पहाड़ी
1: देखने
0: नगरी
1: लायक
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: सी चीजें हैं, फतेह
0: पैलेस
1: सागर
0: वगैरह,
1: है
0: पैलेस वगैरह हैं जी
1: जी, सिटी पैलेस है, दूध
0: जी
1: तलाई है, गुलाब बाग है, सुखाड़िया सर्कल है, सहेलियों
0: हाँ
1: की बाड़ी है,
0: बहुत अच्छी
1: नीमच
0: बात
1: माता
0: है।
1: जी का मंदिर है, और अभी एक 2-3 साल पहले ही एक वैष्णो देवी माता जी का मंदिर भी उदयपुर में बना है, सेम टू सेम जैसा कटरा में है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जो उदयपुर जाए तो काफ़ी चीज़ें घूमने के लिए मिलेंगी, है ना?
1: जी बिल्कुल, वैष्णो देवी मंदिर के पास में ही श्रीनाथ जी का मंदिर भी है,
0: जी
1: और उससे थोड़ा सा पहले भोलेनाथ जी का, एकलिंगनाथ जी का मंदिर है,
0: जी
1: बहुत ही प्यारी सिटी है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी पहुंचा दी हमारे माध्यम से। और अभी कौन सा गीत आप पसंद कर रहे हैं?
1: मैडम, इस गाने को मेरे तीन दिल, जो दिल के बेहद ही करीब रहते हैं ना,
0: जी
1: उनके साथ में चाय की चुस्कियों के साथ में इस गीत का आनंद लूंगा।
0: जी बिल्कुल
1: रफी
0: लीजिए
1: साहब की आवाज है,
0: जी।
1: फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी,
0: हाँ
1: और गाने के बोले, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको
0: जी
1: मालूम है और सबको खबर है, तो
0: जी
1: वो मेरे
0: बिल्कुल।
1: तीन दोस्त हैं, सबसे पहले आप,
0: जी
1: दूसरे नंबर पर मेरा हेलो फरमाइश एकता रेडियो शो का ग्रुप,
0: जी
1: और तीसरे नंबर पर आकाशवाणी MH हॉटलाइन सुनने वाले सभी साथी भाई बहन। धन्यवाद
0: चलिए सभी साथियों के साथ हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं बी आर नामदेव बोल रहा हूँ।
0: पी आर नामदेव जी बात कर रहे हैं
1: हाँ,
0: जी,
1: और आपके कार्यक्रम
0: सोमानी नगर इंदौर से।

0: जी बिल्कुल, हमारे नियमित श्रोता हैं आप, नियमित आपके पत्र हमको मिलते रहते हैं। जी
1: और आपके कार्यक्रम लाजवाब प्रस्तुत होते हैं।
0: धन्यवाद,
1: हाँ
0: हमारा यही प्रयास होता है कि आप श्रोताओं को कार्यक्रम पसंद आए। जी
1: करीब मैं 1970 से सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल, आप हमारे पुराने और बहुत नियमित श्रोता हैं, हम जानते हैं। जी आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज बहू बेगम का,
0: बहू बेगम फिल्म का कौन सा गीत?
1: पड़ गए झूले सावन के,
0: पड़ गए झूले सावन रुताई गए। जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने जो पसंद किया है।
1: हेलो दीदी
0: जी, बताएं क्या बात करना चाहते हैं।
1: और हमारे मित्र हैं
0: जी।
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ प्रकाश सेन पेंशन कॉलोनी वसागिरी।
0: जी
1: पंचशील कॉलोनी से प्रकाश सेन बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, पंचशील कॉलोनी से। जी जी, आपके पत्र भी मिलते हैं हमको। जी
1: जी जी
0: जी और कैसे हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
0: जी धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जी और आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं?
1: बढ़िया बढ़िया।
0: जी बिल्कुल बढ़िया है। और आप आपकी पसंद का गाना सुन लीजिए जो आपने पसंद किया है, हम आपको सुनवा रहे हैं बहू बेगम फिल्म का गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो हेलो, जय
1: मैम, जय श्री महाकाल।
0: श्री महाकाल जी। बताएं कौन बात कर रहे हैं।
1: मैम, मैं एमपी विदिशा से शिवा लोहट बात करता हूँ, आपका नियमित श्रोता।
0: बिल्कुल शिवाजी, आप नियमित श्रोता हैं। और बताएं, आज आपकी कौन सी पसंद है।
1: मैम, मूवी का नाम है ऐतराज और उसमें गाना रहेगा वो तसव्वुर का आलम।
0: वो तसव्वुर का आलम, बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे ये गीत। और
1: जी
0: ये
1: मैम,
0: प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा।
1: जी।
0: और बताएं आपके बारे में।
1: बस मैम, मैं बढ़िया हूँ। एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ, समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ मैम।
0: जी
1: हर
0: जी
1: 3 महीने में रक्तदान करता हूँ
0: जी
1: और पेड़ पौधे लगाते हैं, गौ की
0: जी
1: सेवा
0: बिल्कुल
1: करते हैं।
0: बिल्कुल। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद।

0: इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। माजिद खान को नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। दिन के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आप सूरज को ढलने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप रात को अंधेरे में एक दिया जरूर जला सकते हैं। जीवन का एक सीधा सा नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप अपने दिमाग में संशय, डर और निराशा के बीज बोएंगे तो सफलता का पौधा कभी नहीं पनपेगा। अपने विचारों को बदलने की शुरुआत आज से नहीं, अभी से कीजिए। अपनी सोच को बदलिए, आपका नज़रिया बदलेगा, और जब नज़रिया बदलेगा तो आपकी दुनिया आप अपने आप बदल सकते हैं, और बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। तो याद रखिए, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगेंस एट होम। ऐसी ही एक बदलाव

0: ऐसी ही एक शुरुआत आज हम कर रहे हैं कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि वाहन चलाते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले श्रोता से, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि वो आज के इस विषय को लेकर कितने जागरूक हैं। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ जी
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
1: जी करेली से मोहन कहार बोल रहा हूँ।
0: करेली से
1: मोहन कहार।
0: मोहन कहार जी।
1: हाँ जी। हाँ जी मोहन कहार बोल रहा हूँ करेली से।
0: जी क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप?
1: जी टीचर हो।
0: अच्छा जी जी, तो आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं और आज हमारी बात का विषय जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि जब आप वाहन चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: नहीं, अभी तो हम रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसमें तो ये सब कुछ नहीं है।
0: नहीं नहीं, आप गाड़ी चलाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं या किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे?
1: गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमेशा बाएं तरफ गाड़ी चलाना चाहिए, और गाड़ी धीमी चलाना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए।
0: वाहन धीरे चलाना चाहिए, वाहन की गति नियंत्रित होनी चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप चौपहिया वाहन चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान आप रखते हैं ऐसा आप बता रहे हैं।
1: जी
0: जी, तो आप चाहते हैं कि अपने परिवार के सभी सदस्य जो वाहन चलाते हैं वो इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का पालन करें।
1: जी,
0: ये बातें न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे आस पड़ोस में चलने वालों की ज़िंदगी का भी बचाव कर सकती हैं। आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार। हेलो,
1: हेलो,
0: आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, अपना परिचय
1: आपको आ रही
0: दीजिए।
1: है? खाते
0: जी हाँ, परिचय दीजिए।
1: गांव से बोल रहा था गोविंद जलोजिया,
0: गोविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से। ये
0: अच्छा जी, खाते गांव से। ये कहाँ पड़ता है जी?
1: खाते गांव पड़ता है मतलब हर नेमावर से 15 किलोमीटर।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं गोविंद जी?
1: मैं अभी तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं वैसे ही हूँ,
0: अच्छा
1: रिटायरमेंट टाइप है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा गाड़ी चलाते हैं,
1: गाड़ी नहीं,
0: मोटरसाइकिल?
1: वो तो मैं अपने मतलब चला सकता हूँ वैसे तो।
0: आपके परिवार में कोई और कोई सदस्य अगर गाड़ी चलाता हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता सकते हैं?
1: हाँ, तो गाड़ी चलाते समय क्या मोटरसाइकिल का मेरे पास लाइसेंस भी है, 4 व्हीलर भी है। हाँ, और जो है मैंने अभी रिन्यू भी करवा लिया है। सबसे पहले तो एक नंबर में ये रहेगा कि गाड़ी की जो जगह रहेगी वहीं खड़ी कर दो, और दूसरा नंबर ये है कि दो से मतलब तीन मत बिठाओ,
0: अच्छा जी।
1: ये उसका नेम भी है। और हमेशा चलते रहे, साइड साइड देखे चलो, हाथ बताओ,
0: अच्छा
1: और
0: जी।
1: हमेशा पीछे कांच में देखते रहो, ध्यान
0: गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि
1: देना चाहिए। हाँ
0: जब भी आप गाड़ी को लेकर सड़क पर चलें तो केवल सामने की ओर ही ध्यान न रखें,
1: हाँ
0: पीछे से आने
1: इधर
0: वाले
1: उधर नहीं
0: वाहन
1: देखो।
0: की अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, पीछे वाला व्यक्ति अगर हॉर्न बजा रहा है ना, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। वाहन चलाते समय आपको चारों दिशाओं में अपना ध्यान बना के रखना है, सड़क पर पूरा ध्यान केंद्रित करके चलना है।
1: हाँ, दाएं बाएं और सामने भी देखो।
0: जी, आपने अच्छी बातों की ओर इशारा किया कि केवल सामने ही ना देखें, पीछे से आने वाले वाहनों पर भी आपकी नज़र बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, आपने हमसे बात की, हमें अच्छा लगा आपको।

0: हाँ जी नमस्कार
1: नमस्कार,
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ज्योति बात कर रही हूँ भोपाल से।
0: कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? अभी
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। बताइए, इन दिनों क्या चल रहा है?
1: तो नाश्ता चल रहा है,
0: चलिए
1: बाकी गर्मी और बारिश के मजे लिए जा रहे हैं। और क्या,
0: चलिए, इस मौसम में वाहन चलाते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, यही हमने आज की बात का विषय रखा है।
1: अच्छा, सावधानियां तो सर ये कि हेलमेट लगा के जाते हैं, बारिश अगर हो रही है तो हेलमेट अगर रहेगा तो मतलब सावधानी, मुझे लगता है कि हेलमेट से हम बहुत सेफ रहते हैं। इसके अलावा रेनकोट हम लोग गाड़ी में रखते ही हैं, बस यही सब सावधानियां रखते हैं। और क्या,
0: बारिश के दिनों में फिसलने का अंदेशा ज्यादा रहता है, तो गाड़ी को थोड़ा अतिरिक्त
1: हाँ,
0: सावधानी के
1: और
0: साथ में चल।
1: अभी दरअसल भोपाल में क्या कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो पूरे लगभग रोड तो थोड़े खराब ही हो रहे हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: बारिश में तो ये सब जगह ही रहता है, कहीं
0: जी हाँ जी हाँ
1: पानी भरा जाता है, कहीं मिट्टी विट्टी रहती तो फिसलने का भी डर रहता है ऐसा।
0: तो इस मौसम में गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं अगर पानी भरा हुआ है तो हम धीमी गति से अगर गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारे वाहन का संतुलन ना बिगड़े, लेकिन अगर अगर हम
1: हाँ
0: तेज़ गति से या बहुत स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो उस गड्ढे से पानी तो उछलता है, पानी उछल के आसपास में चलने वाले राहगीरों पानी पड़ता है, तो वो एक अच्छी
1: जी
0: बात नहीं है। और एक सावधानी तो ये हो ही जाती है कि अगर वाहन धीमी गति में है तो वो उस पर
1: जी
0: नियंत्रण पाना बड़ा आसान रहता है।
1: सर, मुझे ऐसा लगता है कि धीमी गति में तो गाड़ी हमको वैसे भी मतलब इतनी स्पीड तो रखनी चाहिए जिसमें बस हमारी गाड़ी कंट्रोल हो सके। किसी
0: जी जी
1: भी सीजन में हमको इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि
0: और
1: थोड़ी देर से हम पहुंचे हैं लेकिन सुरक्षित पहुंचे, मुझे ऐसा लगता है।
0: जी, हमने एक विश्लेषण पढ़ा था कहीं कि लोग बहुत तीव्र गति से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हम नहीं बचा पाते हैं, मुश्किल से बमुश्किल 10 या 15 मिनट का ही अंतर आ पाता है। तो 10 या 15 मिनट बचाने के खातिर आप अपनी जान को दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं ना।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: बात
0: सड़क पर अगर आप तीव्र गति से गाड़ी चला रहे हैं, अनियंत्रित गति से गाड़ी चला रहे हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, तो केवल ये आपका ही नुकसान होने का अंदेशा नहीं होता है,
1: है, आपका
0: आशंका
1: परिवार भी सफर
0: जी,
1: करता है।
0: इस आशंका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आपकी इस लापरवाही की सज़ा आपके साथ चलने वाले, आपकी सड़क पर चलने वाले लोगों को भी इसका
1: जी
0: खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ज्योति जी, आपने फ़ोन किया, हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। एक गीत हम आपको सुनवाना
1: मुझे
0: चाहेंगे।
1: भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर। आकाशवाणी का धन्यवाद, आकाशवाणी के पूरे परिवार का धन्यवाद। हम बहुत प्रोग्राम वगैरह सुनते हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं सालों से ही।
0: चलिए, इसी तरह जुड़े रहिए। फिलहाल एक गीत,
1: जी
0: आपकी नज़र।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी। मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। जी
0: दीपक जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से।
1: सर। सर
0: अच्छा जी, कैसे हैं दीपक सिंह जी?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ आप भी बहुत अच्छे होंगे।
0: हम तो बहुत बढ़िया हैं। बताइए, आज हम बात कर रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए,
1: जी
0: और हमारी आज की बात का विषय है कि सड़क पर जब आप वाहन चलाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: देखिए सर, सड़क पर जब हम वाहन चलाते हैं, अगर हम टू व्हीलर से चल रहे हैं तो हमें पूरे तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए और दो लोगों को ही सफर करना चाहिए। और रास्ते पर हमें कहीं अगर दाएं बाएं मुड़ना है तो हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि हमारे पीछे कोई दूसरा वाहन तो नहीं आ रहा है। और अगर फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए
0: बिल्कुल सही बात। और
1: और हमें
0: इसमें
1: बड़ी
0: कोई इस जी
1: और ड्रिंक ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
0: मतलब नशा कर किसी भी प्रकार का नशा करने के बाद वाहन नहीं चलाना चाहिए।
1: जी सर।
0: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे साझा की है।
1: जी सर।
0: चलिए, इसी बात पर हम एक गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: आपकी आवाज़ हम तक आ रही है
1: आप कौन बोल रहे साहब?
0: जी? आकाशवाणी मध्य प्रदेश से शिवम बोल रहा
1: साहब
0: हूँ।
1: मैं इतनी बार फोन लगाती हूँ, मेरा कभी भी फोन नहीं लगता है। मैं हॉटलाइन में ऐसा ऐसा ऐसा क्या हो जाता साहब?
0: आज तो लग गया है जी हमारी तरफ से। हम फोन लाइन तो खोल के रखते हैं लेकिन

0: वो नहीं लग पाता, ये शायद किसी और वजह से होता होगा।
1: जी हम रतलाम डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, मतलब मैंने कितनी बार ट्राई करी, कितनी बार ट्राई करी भाई साहब, पर मेरा क्यों नहीं लगता है।
0: जी, बताइए, अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम है सरला चौहान, और मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट ताल आलोट आलोट
0: सरला जी,
1: जी हाँ
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हाँ मैं आलोट आलोट तहसील रतलाम डिस्ट्रिक्ट।
0: आलोट से बोल रही हैं। परिवार के सदस्य गाड़ी चलाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? आप अगर इस विषय पर कुछ बताना चाहें तो बताएं।
1: जी हाँ बताऊंगी ना साहब, गाड़ी हमेशा नियम से बाएं हाथ पे चलाना चाहिए और धीमी गति में चलाना चाहिए और सभी का ध्यान रखना चाहिए। जी
0: और
1: हाँ, और सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जो ट्रैफिक है उसको देख के चलना चाहिए और किसी भी सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए।
0: तो सरला जी, आपने बहुत बढ़िया बात की हमसे, लेकिन एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि
1: जी हाँ
0: जब भी हम वाहन चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सड़क है, वो
1: जी
0: रेस
1: हाँ
0: का मैदान नहीं है।
1: जी हाँ
0: अगर आप सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, किसी से होड़ करते हैं, किसी से रेस लगाने लगते हैं, तो ना
1: हाँ
0: केवल ये आपकी जान के साथ खिलवाड़ है,
1: जी
0: बल्कि
1: हाँ
0: उस सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों के लिए या
1: जी
0: दूसरे
1: हाँ
0: वाहन चालकों की जान भी आपकी इस आदत की वजह से खतरे में पड़ सकती है।
1: जी हाँ दूसरों को भी खतरा रहता है, वो स्वयं गाड़ी वाहन चलाते समय कृपया मोबाइल से बात न करें, कहीं भी रुककर बात करें, और आपस में दो दो बैठे हैं वो तो भी बात न करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस बात को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाएं कि आप जब गाड़ी चलाएं तो केवल अपना पूरा ध्यान, केवल और केवल आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो।
1: जी हाँ जी हाँ
0: धन्यवाद आपको।
1: जी हाँ थैंक यू वेरी मच।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी जी जी सुन पा रहा हूँ सर, जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ सर, मैं छिंदवाड़ा से। सर
0: अच्छा जी, बताइए कैसे हैं?
1: मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज आपने फोन किया है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, और आज
1: जी
0: की
1: जी
0: बात का विषय है कि वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां आप रखते हैं और कौन कौन सी रखी जानी चाहिए, जिनकी जानकारी आपको हो लेकिन आप अपने हमारे और किसी श्रोता को वो जानकारियां बताना चाहेंगे।
1: जी जी जी जी सर, वाहन चलाते हैं सर आजकल तो सभी लोग वाहन का यूज कर रहे हैं सर, और ज्यादातर ई व्हीकल यूज करना भी चाहिए। वाहन चलाते समय सर सबसे पहले हम घर से निकले तो एक तो फोर व्हीलर से निकले तो सीट बेल्ट लगाए, और बाइक या मोपेड से निकले तो हेलमेट लेकर कैरी कर साथ में निकले। और सर साथ में निकले तो प्रॉपर जो सिग्नल्स होते हैं उसको फॉलो करें, ना कि

0: बिना सिग्नल को देखे और उसको इग्नोर करके तोड़ के चले जाए, ये दुर्घटना का बड़ा कारण हो सकता है सर। तो इन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
1: बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात की ओर इशारा किया है कि वाहन चलाते समय हम सिग्नल्स की अनदेखी ना करें, आपाधापी में या जल्दबाजी के दौरान इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए कि कोई भी सिग्नल अगर आप जंप करते हैं तो ये ना केवल आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है बल्कि सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे व्यक्ति की भी जान आपकी इस हरकत की वजह से, आपके इस दुर्घटना को आमंत्रित करने वाले तौर तरीके की वजह से खतरे में पड़ सकती है।
0: जी जी जी सर।
1: आपने हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको देते हैं धन्यवाद। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
0: जी जी जी नमस्कार सर। नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार
1: जी सर, नमस्कार।
0: जी।
1: सर, आकाशवाणी से बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। अपना परिचय
1: जी सर।
0: दीजिए।
1: सर, मैं पिंकी असाटी छतरपुर से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, कैसी हैं जी?
1: मैं ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ मैं।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं बेसिकली एक टीचर हूँ।
0: अच्छा जी, तो वाहन चलाते हैं कि नहीं आप? गाड़ी
1: जी सर,
0: चलाते हैं
1: चलाती हूँ।
0: जी।
1: बिल्कुल
0: गाड़ी चलाते वक्त किन किन बातों का आप ध्यान रखती हैं, किन किन बातों को चाहती हैं कि दूसरे भी इन बातों पर ध्यान दें?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा सर।
0: जी
1: एक्चुअली मैं तो अभी मैंने गाड़ी भी नई नई ही सीखी है, तो मैं जो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात सर कि ट्रैफिक सिग्नल को हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों को जब गाड़ी बहुत अच्छे से आ जाती है तो वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। और बहुत सारी चीजें सर, बरसात के समय में तो विशेष रूप से हमें सड़क का भी ध्यान रख के, ओवर स्पीड ना करके, ऐसी कई चीजें सर जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए।
0: आपने एक बहुत अच्छे विषय की ओर इशारा किया है कि बरसात के दिनों में चूंकि सड़कें गीली रहती है, उस पे मिट्टी कीचड़ वगैरह रहता है, तो वाहनों को फिसलने की जो अंदेशा रहता है, आशंका जो रहती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलानी चाहिए
1: बिल्कुल सर।
0: जी। और कोई ऐसी बात जो लगता है कि जिसकी ओर सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़ पाती है, वो सामान्य तौर पर उस बात को नज़रअंदाज कर जाता है, वो अगर आप बताना चाहें तो?
1: हाँ सर, मेरे हिसाब से तो मैंने जो अपने यहाँ देखा है, तो ट्रैफिक सिग्नल ही सबसे बड़ा इशू है आजकल की इस भारतीय दुनिया में। लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये एक आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि सड़कों पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स जो बनाए गए हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। तो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जब रुकने का अगर निशान है, रुकने का इशारा किया गया है, तो रुकें, और जब चलने की बारी आए तभी चलें। इस बात का ध्यान
1: बिल्कुल
0: आप ज़रूर रखें, और गाड़ी मोड़ते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी मोड़ रहे हों या आप लेन बदल रहे हों, तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से, जब तक इस बात को पुरजोर तरीके से दूसरों को ना बता दें, तब तक आप अपनी वाहन को दूसरी लेन में ना पहुंचाएं या दूसरे लेन में ना चलाएं।
1: बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
0: जी, गाड़ी मोड़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अपना हाथ जो है, जिस ओर मुड़ रहे हैं आप, उस ओर का हाथ आपको इतना इस तरीके से इशारा करना है कि पीछे चलने वाला या सामने से आने वाला वाहन चालक उस बात को समझ जाए। कुछ लोग केवल हाथ हल्का सा, थोड़ा सा ऐसा हिलाते हैं, या केवल हल्का सा हाथ थोड़ा सा उठाते हैं, जिससे यही नहीं पता चल पाता है कि वो मुड़ना चाह रहे हैं या उन्होंने केवल सामान्य तौर पर अपना हाथ ऊपर उठाया है। चलिए, आपने हमसे अच्छी बात है कि आपने बहुत समय निकाल कर हमें फ़ोन किया, इसके लिए धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। अब ये कार्यक्रम ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ग्यारह बजकर 58 मिनट होने जा रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यहां मालवा एक्सप्रेस के अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज रहेगा। इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। यह दिन जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर जोर देना है। वहीं आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल और इंदौर सहित सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। बारह बजने जा रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा ये रहा।

आशा भोसले और साथियों को आप सुन रहे हैं अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आरडी बर्मन ने इस गीत को संगीत से सजाया है, बोल हैं आनंद बख्शी के और सुनने वाले हमारे ये सभी श्रोता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। अब कार्यक्रम में हम जिस गीत को लेकर आ रहे हैं उस गीत के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। सरोज

चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान और साथ में हैं शाहिद भाई। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार, कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश करते हैं और यह है अभिजीत गावणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गावणकर, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से अगला खत लिख भेजा है हमें शैलेश गावणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गावणकर ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। ये गीत है बधाई दो फिल्म से, नक्श अजय अमित त्रिवेदी और साथियों ने इसे गाया है, वरुण ग्रोवर ने शब्द दिए हैं और धुन है अमित त्रिवेदी की।

और अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। ये है गोलमाल फिल्म का वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और अमित कुमार ने। गुलजार के बोल हैं राहुल देव बर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु, राशि, रक्षित एवं इनका पूरा परिवार। अनिल कवचाले, नेहा फणसे, सीमा सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता और इनके साथियों ने ये गीत सुनना चाहा है। चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, पुराना तालाब डुमगांव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और इनका परिवार। सारिमपुर बक्सर से इस ख़त को लिख भेजा है राज SD अंसारी और गुलफराज भागलपुरी ने। इन सभी दोस्तों ने सुनना चाहा है गोलमाल फिल्म का ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं काला पत्थर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, साहिर ने लिखा, धुन राजेश रोशन की। इस गीत को और इस गीत के बाद आने वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने अपनी चिट्ठियां लिख भेजी हैं उनके नाम ये रहे: जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जी एस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये चिट्ठी लिख भेजते हैं। राजपुर से ये अगला खत आया है: घीसू, दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे का, गांव भड़भूंजी, ज़िला आगर, मध्य प्रदेश से ये चिट्ठी लिख भेजे हैं। रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना।

ये गीत है कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, अनजान के बोल। फिल्म का नाम शोला और शबनम, धुन बप्पी लहरी की।

0: शुल और शबनम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। आप सभी को हमारा नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:25 होने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
4: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
4: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे,
8: आरबीआई कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:30 हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कामिनी का एकांतारे। आज इसकी 13वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 13वां भाग। अब तक आपने सुना कि भेषज्ञ त्रिलोचन उज्जैनी जाते हैं और अपने मित्र वैद्यराज मृगांक दत्त से मिलते हैं। त्रिलोचन का उद्देश्य वैसिका से मिलना है और इसी के लिए वे मृगांक दत्त की सहायता लेते हैं, परंतु उनका कार्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि रानी पिंगला और वैसिका अज्ञातवास में कठोर तांत्रिक अनुष्ठान कर रही होती हैं। अब आगे।

0: सुझाव चंपा का ही था कि रानी को अनुष्ठान करना चाहिए। चंपा नरेश की उपपत्नी है। दहेज में रानी के साथ मायके से आई हुई दासी। परंपरागत सेवा समर्पण से संपन्न है वो। वो जानती है कि वो ब्याहता नहीं है। चंपा ने कभी रानी होने का सोचा भी नहीं, किंतु वो सदैव राजा को अपना स्वामी ही नहीं मन ही मन अपना पति भी मानती आई है, और अब तो उसके गर्भ में राजा का अंश, राजा का गर्भ भी पल रहा है।
1: राजा के चले जाने पर मेरा मन चिंतित है और उद्विग्न भी। मैं जानती हूं कि संतान की कामना में रानी पिंगला बहुत अशांत और व्यग्र रहती है।

0: इसलिए गत 15 महीनों से प्रति माह पूर्णिमा को गढ़ कालिका की महाअर्चना हेतु जाती रही है। नितांत गोपनीय रूप से गुप्त द्वार से अकेली, किसी को सूचना नहीं। वो नहीं चाहती कि राजा को अनुष्ठान का ज्ञान हो। वह संतान के रूप में फलवती होकर महाराज को आकस्मिक प्रसन्नता देना चाहती है।
1: महाअर्चना के दुर्ग से बाहर के यात्राओं में सुरक्षा के लिए महारानी के साथ केवल एक अत्यंत विश्वसनीय, बलिष्ठ, सुंदर और युवा सेना नायक उनके साथ होता था, जो महालय के भीतर कभी नहीं आया। कौन था ये भी किसी ने नहीं जाना। महादेवी अंतिम बार होलिका पूर्णिमा को गई थी और तभी से गुमसुम है। चंपा ने अनेक बार उनके उन्मन क्षोभ का कारण जानने का प्रयास किया, किंतु वो तो गहरी सांस भर कर रह जाती या आंसू टपकाने लगती। इसी बीच राजा भर्तृहरि किसी दिन अचानक और अज्ञात रूप से महालय और उज्जैनी छोड़कर चले गए। कहां किसी को ज्ञात नहीं।

0: 40 दिन का अत्यंत कठोर तांत्रिक अनुष्ठान, जिसका सुझाव और परामर्श चंपा ने रानी पिंगला को दिया था। निर्जन बियाबान स्मशान भूमि में इसे साधा जाना था। इस अवधि में कठोर संयम और नियमों का निर्वाह। अनुष्ठान की अवधि में रानी को नंगे पांव रहना होगा, सिर में तेल नहीं लगेगा, केश खुले और सूखे रहेंगे। एक समय स्वपाकी भोजन, निरामिष और शुष्क, सभी कार्य स्वयं और रात में जलती चिताओं के बीच मंत्र पाठ, हवन और साधना। वैसिका सोच रही थी कि ऐसा कठोर अनुष्ठान क्यों स्वीकार कर लिया रानी ने। उसका ये अनुमान दृढ़ होता जा रहा था कि नरेश ने महारानी के कारण ही घर छोड़ा है, किंतु कारण वो नहीं जानती थी। वो जानती थी कि पुत्र कामना के लिए महादेवी प्रति पूर्णिमा की रात गढ़कालिका की ओर जाती थी, किंतु उनके साथ कौन होता था ये उसे ज्ञात नहीं था। वो महामात्य के साथ अपने संशय को साझा करना चाहती थी, पर न उसे इसका अवसर मिला और न उसने इसके लिए अवसर को निकाला ही।
1: अब तू लौट जा चंपा।
2: जी,
1: यहां वैसिका रहेगी हमारे साथ। 40 दिन का कठोर जीवन तेरे लिए ठीक नहीं है। तेरी कोख में जो संतान है वो केवल राजा की ही नहीं, हमारी भी है। उसे संभाल कर रखना तुझ पर बहुत बड़ा दायित्व है। यूं समझ ले कि हमारा ही अंश तेरे गर्भ में पल रहा है। संभव है कि यही हमारे माथे का दुर्भाग्य पहुंचे।
2: किंतु रानी जी, आप कैसे साथ पाएंगी 40 दिनों का ये कठोर अनुष्ठान? कठोर भूमि पर शयन तो दूर, आप कभी नंगी भूमि पर भी नहीं बैठी। अल्पाहार, निराहार, उपवास, नितांत शुष्क एकांत साधन।
1: चंपा मेरी बहन, स्त्री सब साथ लेती है, सह लेती है। सहते जाने का अभिशाप ऐसे कठिन समय में हमारा अभ्यास हो जाता है। चंपा, किसी को पता ना चले कि तुम गर्भवती हो।
2: जी रानी।
1: और हमारे वापस आने तक

0: तुम्हें महालय का गुमान बनाए रखना है।
1: जी बिल्कुल।
0: और मामात सब जानते हैं, वो तुम्हारे अभिभावक हैं, रक्षा करेंगे तुम्हारी, महाकाल सब मंगल करेंगे। चंपा अब हम चलते हैं।
1: जी रानी।
2: चंपा बहन, महादेवी की चिंता ना करना, वैसिका उनके लिए अपने प्राण तक समर्पित कर देगी। ये अनुष्ठान उनके अकेले का नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ। वो अपने पति को वापस लाना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि अवंती नरेश अपनी राजधानी में वापस आ जाएं।
1: जी।
2: महामाति ने इस अत्यंत गोपनीय अभिचर के लिए मुझे सहयोगी के रूप में चुना है, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी।
3: क्या हुआ वैसिका?
2: कुछ नहीं देवी, देव के विधान पर सोच रही थी। काल की गति और परिणाम जानने के गर्वोक्ति चाहे विज्ञानी करें या कोई देवज्ञ, कोई समझ नहीं सकता। आप किंचित विश्राम करें, मैं इन 40 दिनों वाली पूजा की व्यवस्था लगाती हूँ। और क्षमा करें महादेवी, इन 40 दिनों में अपने उपयोग का जल आपको स्वयं ही नदी से भर कर लाना होगा। आज शनिवार है और आपके अनुष्ठान का प्रारंभ आज ही से हो रहा है।
0: हम तो भूल ही गए थे कि अब 40 दिन तक हम राजमहिषी नहीं हैं।

रानी पिंगला ने तंत्र उपचार प्रारंभ कर दिया। कुटिया से 10 धनुष उत्तर में अधसूखे वृक्ष पीपल के नीचे क्रियाएं होनी है। वैसिका ने अनुष्ठान की सामग्री वहां क्रमानुसार लगा दी। मूंज, कोश, खप्पर, दीपक, जौ, तिल, अक्षत, गंध आदि, कच्चा सूत, इंद्रजौ, गुग्गल, रक्त चंदन, कर्पूर, संपूर्ण सामग्री का संयोजन अत्यंत सावधानी से, तनिक भी त्रुटि अथवा न्यूनता अधिकता अनुष्ठान की असफलता का कारण बन सकती है। अत्यधिक सतर्क थी वैसिका सामग्री सहेजने में।

अर्धरात्रि से दो घड़ी पूर्व रानी पिंगला तांत्रिक क्रिया संपन्न करके कुटिया में लौटी। पहला दिन व्यतीत हुआ, 39 दिन अभी और यही क्रम, यही साधना होनी है।

0: वैसे का दीप जला लेती, भीतर अंधेरा भरा है।
1: मुझे रात्रि में चित लेटकर आकाश की ओर ताकना अच्छा लगता है महादेवी। दीपक की लौ से ये भान होता है कि कोई और भी है, और इससे आकाश के शून्य से मेरे संबंध में बाधा उत्पन्न होती है।
0: ओहो, तो इन दिनों आकाश से

0: बता दो तो कदाचित सहायता भी कर सके हम तुम्हारी।
1: इस प्रसंग को छोड़िए महारानी, आप अपना भोजन बना लें, मैंने अपना बना लिया है। साथ

0: दिन प्रतिदिन यही उपक्रम, रानी पिंगला और वयसिका की ऐसी ही नित्यचर्या, जिसमें 40 दिवस और 40 रात्रियां व्यतीत हो गई। उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए महामात्य ने विशेष व्यवस्था कर रखी थी। धनुष बाण, खड़क से प्रतिपल सन्नत जीवन सदा उनके आसपास रहता, किंतु अदृश्य, उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित, केवल वयसिका ही जानती थी। रानी यही समझती रही कि वो दोनों ही केवल उस निर्जन एकांत में हैं, उनके सामने जीवक कभी प्रकट नहीं हुआ। 40 दिन पूरे होने के बाद जीवक महादेवी के सामने आया।
1: सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महादेवी।
2: जीवक नाम है ना तुम्हारा?
1: हाँ महादेवी।
2: किस ग्राम से हो? हम व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी कृतज्ञ हैं। तुम्हें महामाते ने नियुक्त किया है ना?
1: महादेवी का अनुमान सत्य है।
2: कृषक हो?
1: मृत्यु हूँ महादेवी का।
2: अवंती पहुंचकर हम महामात्य से कहेंगी कि तुम्हें 5 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएं।
1: आपका अनुग्रह दास का सौभाग्य है।
3: बंधु जीवक, ये महारानी है अवंती नरेश की अर्धांगिनी, जानते हो?
1: जानता हूँ देवी, क्यों नहीं जानूंगा।
3: तुम कृषक नहीं हो जीवक, यही सच है। तुम महादेवी के सामने असत्य भाषण कर रहे हो, और ये कि तुम महामात्य के परम विश्वस्त हो।
1: मेरा परम सौभाग्य है कि मैं महामात्य का क्रीत दास हूँ।
3: मैं भी क्रीत दासी हूँ, मुझे भी महामात्य ने क्रय किया था। अब अपने अपराध का दंड सुनो। तुम्हें हमारे साथ मेरे और महादेवी के साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा महारानी?
2: नहीं वैसे का जीवक, इसे महादेवी की ओर से उनकी सेवा का पुरस्कार मानो।
3: अब स्वपाक स्व अवलंब की बाध्यता नहीं रही महादेवी, आप विराजें, मैं भोजन प्रस्तुत करती हूँ।
1: मैं एक सूचना लेकर प्रस्तुत हुआ था स्वामिनी।
3: मुझे स्वामिनी ना कहो जीवा। हाँ तो क्या सूचना है?
1: प्रातः ही यहाँ से प्रस्थान करना है, महामात्य व्यग्रता से आपकी प्रतीक्षा में है।
3: अन्य कोई सूचना?
1: कल सायं तक आप कनक श्रृंगा पहुंच जाएंगी, मुझे बस इतना ही ज्ञात है। प्रातः आप दोनों के लिए सवारी आ जाएगी। 4 कोस तक रथ का मार्ग नहीं है, वहां तक अश्व पर चलना होगा।
3: और कुछ
1: नहीं?
3: अच्छा ये बताओ, मेरे विषय में महामाती ने तुमसे कुछ कहा था?
0: जीवक चुप रहता है।
3: मैंने कुछ पूछा है जीवक?
1: जी, यही कहा था कि महादेवी तो हैं ही, आपको भी मैं स्वामिनी समझकर ही व्यवहार करूं।
0: राजवर्ग से श्रेष्ठी वर्ग तक समाचार फैल गया कि रानी पिंगला गर्भवती हैं। महादेवी अपनी कोख में भावी नरेश का बीज सहेज कर आ रही हैं। प्रजा की 10 वर्ष की प्रतीक्षा फलवती होगी। महादेवी कल सायंकाल पुत्र श्रेष्ठ अनुष्ठान संपन्न करके महालय लौट आई हैं। नरेश अभी नहीं लौटे हैं, उनके लौटने का मुहूर्त राज ज्योतिषी निश्चित करेंगे। ग्रह दशा पूर्ण अनुकूल होने पर ही राजा भर्तृहरि महादेवी का दर्शन करेंगे।

उत्सव प्रिय उत्सव धर्मी कनक श्रृंगा अवंति में नूतन चेतना का समीकरण बहने लगा। तोरण पताका यत्र तत्र सर्वत्र लहराने लगी। मार्गों वीथियों पर सुगंधित पुष्पों का ढेर जमा होने लगा। क्षिप्रा तट पर मंगल गान हेतु सुंदरियां एकत्रित होने लगी। आज उत्सव श्रृंखला के

रानी पिंगला महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात हर सिद्धि मंदिर पहुंचेगी, मंगलनाथ की अर्चना करेंगी, काल भैरव का समराधन कर गढ़ कालिका पर कुल सत्र में सम्मिलित होंगी और सायंकाल क्षिप्रा में दीप

0: महामात्य पधारे हैं, शीघ्र भेंट के लिए आग्रह किया गया है।
1: उन्हें सादर निवेदन करो कि महादेवी अभी पहुंचती हैं।
0: जी।
1: स्वामिनी, महामात्य पधारे हैं।
2: क्या?
1: महामात्य भेंट चाहते हैं, आ चुके हैं, वासंती कक्ष में प्रतीक्षारत हैं।
2: अच्छा वैसिका, तुम चलो, हम आते हैं।
1: देव दासी प्रणति निवेदन करती है।
3: ओह वैसिका, बैठो बैठो।
1: लोकापवाद होगा महामना, एक दासी महामाती की उपस्थिति में आसन ग्रहण करेगी तो महालय हिल उठेगा। मैं तो अकिंचन हूँ, अस्तित्वहीन, किंतु लोक विश्वस्त अवंती राज्य के देवमान्य महामाते का गौरव नहीं। देव, इस समय आप भी स्वतंत्र नहीं हैं।
3: वैसिका, तुम नहीं जानती कि मैं कितना अकेला हूँ। कुल परिवार के सभी जन अपने अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, लेकिन मैं अपने एकांत में भटकता रहता हूँ। तुमने कदाचित ना सोचा हो कि तुम्हारा साथ पाकर मैं अपना दायित्व और सुचारू रूप से निर्वाह कर पाऊंगा। मैं भीतर से थक रहा हूं वैसिका, दृढ़ता का अभिनय अब मुझसे नहीं सर पा रहा।
1: शांत हो देव, आसन ग्रहण करें।
3: महीनों से राजा के दर्शन नहीं हुए, राज्य अरक्षित हो रहा है, बाह्य शत्रु तो घात लगाए ही रहते हैं। कौन जाने राज परिवार के ही किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कब जाग उठे। राजा की उपस्थिति के अभाव में महामाते की शक्ति वंध्या हो जाती है। चौमासा चला गया और महाराज के विषय में कोई सूचना नहीं है। प्रजा और राजन्यों को भरमाने के लिए मैंने महादेवी के गर्भवती होने का भ्रम फैलाया है, एक अर्ध सत्य का सहारा लिया है। मुझे तुम्हारे अवलंब की आवश्यकता है वैसिका। क्या मैं केवल महामाते ही बना रहूं? मुझे मनुष्य नहीं रहना चाहिए।
1: अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य का महामाते भी आदमी अवलंब के अभाव में कितना शीहीन है। प्रवंचना और असत्य के महाव्यापार में विश्वास की इच्छाओं के बिना क्यों नहीं जी पाता। महाकाल, तेरी रचना विचित्र है।
0: महादेवी पधार

0: महादेवी स्वस्थ तो है ना?
1: अनुग्रह है महाकाल का, आप पधारने का हेतु कहें।
0: वो क्या गोपनीय चर्चा कर सकता हूँ?

वैसे का तुम यहीं ठहरो और सुनो कि आर्य महामात्य क्या क्या कहते हैं। हमारा चित्त अभी उद्विग्न है, द्वंद बना रहता है। ऐसे में महामात्य से मंत्रणा में तुम ही हमारी सहायता कर सकती हो। आर्य, हमने वैसिका को

0: उनका स्वेच्छाचार सीमाएं लांघ रहा है।
1: फिर
0: हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, सतर्कता और संतुलन बनाए रखना होगा।
1: आर्य
0: जी,
1: इस उत्सव के दीर्घ आयोजन का प्रयोजन बताएंगे आप?
0: निश्चय ही देवी। प्रथमता तो ये कि इतने दिनों तक प्रजा उत्सुक और व्यस्त रहेगी, उसका ध्यान बटा रहेगा। कुछ दिन उत्सव में बीतेंगे, फिर कुछ दिन उसकी चर्चा, स्मृति और आलोचना में। तब तक संभव है कि महाराज की कोई सूचना हमें मिले, अथवा सौभाग्य से वो स्वयं आ जाएं। उसके अतिरिक्त ये समाचार भी फैलेगा कि इस उत्सव का आयोजन राज्य के उत्तराधिकारी के गर्भ में आने के कारण हो रहा है। समाचार महाराज तक भी पहुंचेगा और वो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मैंने तो यही सोचा है, आगे महाकाल की इच्छा। आप कुछ और जानना चाहेंगी माँ देवी?
1: हमें क्या जानना है आर्य?
2: अनुचित ना हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आर्य। निवेदन करूं स्वामिनी?
1: वैसिका, हमने तो पहले ही अपना दायित्व तुझे सौंप दिया है, अतः कोई संशय या जिज्ञासा हो तो आर्य के सम्मुख रखो।
2: देव
0: जी,
2: आपकी योजना सर्वांग संपुष्ट है। महाराज के गमन को 3 माह और 27 दिवस व्यतीत हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा कि गर्भ 4 माह से अधिक का है। इस उत्सव में महादेवी जहाँ भी पहुँचें, उनके उठने बैठने वार्ता व्यवहार से ये परिलक्षित होना चाहिए कि वे गर्भवती हैं और उन्हें इन दिनों प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी युक्ति से सामान्य प्रजा के बीच जाना होगा, ताकि राजन्य वर्ग में जनसाधारण में नरेश की अनुरक्ति की चर्चा चले। प्रजा की अनुरक्ति नरेश के प्रति षड्यंत्रों को हतोत्साहित करती है।
1: हाँ, ये उचित है।
0: हाँ, ये ठीक है।
3: सभी ने वैसिका के सुझाव पर सहमत

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 13वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामिनी काय कांतारे की 13वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ और नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहां सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी रहेगा। वहीं इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधि मंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और वन विहार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर जोर देना है। वहीं आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। इससे वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे

थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुखियों बारिश की इस रिम झिम फुहारों के साथ महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए सुषमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जागरूकता उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा। सखियों, हम अपने परिवार के हर सदस्य की सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। ऐसी ही एक बीमारी है हेपेटाइटिस, जो हमारे लीवर यानी यकृत को प्रभावित करती है। सखियों, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। सखियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस होता क्या है। सखियों, हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सामान्य सा कारण है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस। सखियों, इनमें से कुछ प्रकार के दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि कुछ संक्रमित खून और असुरक्षित इंजेक्शन या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से भी फैल सकते हैं। सखियों, चिंता की बात यह है कि कई बार शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण दिखाई ही नहीं देते, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक लीवर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। सखियों, अगर लगातार थकान महसूस हो, भूख कम लगे, आंखें या त्वचा पीली पड़ जाए या फिर पेट में दर्द हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सखियों, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जरूरी है कि हमेशा हम साफ और उबला हुआ पानी ही पिए, बाहर का कटा हुआ फल या अस्वच्छ भोजन खाने से बचें, इंजेक्शन हमेशा नई और डिस्पोजेबल सुई से ही लगवाइए, किसी का रेजर, नेल कटर या फिर टूथब्रश साझा ना करिए, बच्चों और नवजात शिशुओं का हेपेटाइटिस बी टीकाकरण समय पर जरूर करवाइए और यदि डॉक्टर सलाह दे तो समय समय पर अपनी जांच भी करवाते रहिए। सखियों, अक्सर हम महिलाएं पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी जांच और स्वास्थ्य को टाल देती है। याद रखिए सखियों, यदि आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो बीमारी से लड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उससे पहले ही बचाव कर लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये तो बात हुई स्वास्थ्य की, और कार्यक्रम में आज सखियों आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनवाती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

पर खड़ी हो, अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में हाथ बटाए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इसी सोच को साकार करने के लिए सरकार चला रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सखियो, अगर आप गांव में रहती हैं और अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहती हैं, तो ये योजना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं नियमित बचत करती हैं, कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं और अपना छोटा व्यवसाय जैसे सिलाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती या पापड़ बनाना, मसाला पैकिंग, हस्तशिल्प और कई अन्य स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। इतना ही नहीं सखियो, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करने की जानकारी, बैंक से जुड़ने में सहायता और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में भी मदद दी जाती है। यानी सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि उसे सफल बनाने का मार्ग भी दिखाया जाता है। सखियो, अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह पहले से बना हुआ है तो उससे जरूर जुड़िए, और अगर नहीं बना है तो अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विकास खंड कार्यालय या ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी जानकारी लीजिए। सखियो, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है ना, तो सिर्फ एक परिवार नहीं पूरा गाँव आगे बढ़ता है। तो अवसर का लाभ उठाइए, अपने हुनर को पहचानिए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी बनिए। और जैसा कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं सखियों, तो हमारा ऐसा ही क्रम है मेरी उड़ान, जिसमें हम अलग अलग सखियों से उनकी उड़ान की कहानी सुनते हैं। तो चलिए रुख करते हैं हमारे क्रम मेरी उड़ान में। सखियों, कहा जाता है कि शब्द दिल तक पहुंचते हैं, लेकिन संगीत सीधे आत्मा को छूता है। खुशियों के रंग हो, यादों की महक हो या फिर भावनाओं की गहराई, हर एहसास का एक सुर होता है। तो कार्यक्रम मेरी उड़ान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक उभरती हुई गायिका का।

0: क्या बात है, ये खूबसूरत सी आवाज है हेमा मछिया जी की, जिनसे होगी आज हमारी मुलाकात हमारे क्रम मेरी उड़ान में। बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: हेमा जी, हमारा जो क्रम है मेरी उड़ान, उसमें हम बात करते हैं महिलाओं के उस सफर की जिसमें वो अपनी पहचान अपने स्तर पर बनाती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपकी कहानी, आपके सफर की शुरुआत जानना चाहेंगे।
1: मेरा संगीत का जो सफर है वो बचपन से ही शुरू हो गया था। मेरे नानी गाते थे भजन, मैं उनके साथ में गाती थी। तब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, तब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी और मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही हुआ करता था। और फिर इसके बाद में मैं जब 10th क्लास में गई तो मैं एक म्यूज़िक टीचर हमारे स्कूल में आए, और फिर उसके बाद में जब टीचर से मिले तो टीचर को कुछ दिखा होगा, शायद उनको प्रतिभा दिखी छुपी हुई। देन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलो अब ये कंपटीशन के लिए तैयारी करो, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने तैयारी करा करा के करा करा के, और देन मुझे रियलाइज़ करवा दिया कि हाँ मेरे अंदर म्यूज़िक है। देन उसके बाद में मैंने 11th क्लास के बाद में म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया, और मुझे 12th तक आते आते ये तय हो गया था कि अब मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करने वाली हूँ, म्यूज़िक में ही मुझे पढ़ाई करना है। तो फिर मैंने उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स देन मास्टर ऑफ म्यूज़िक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक वो कंप्लीट किया, और उसी के साथ में मेरे फादर अचानक से ही एक्सपायर हुए। देन उसके बाद में मैंने म्यूज़िक में काम करना स्टार्ट किया एज अ स्टेज परफॉर्मर। मैंने स्टार्ट किया गाना, और फिर वहीं से मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ, वहीं से फिर मेरा बैचलर डिग्री और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, फिर मैंने बीएड भी किया क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जॉब भी करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं म्यूज़िक लेक्चरर बन जाऊंगी,

0: फिर समय के साथ चीज़ें चीज़ें चलते गई चलते गई, देन उसके बाद में ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जो असली प्यार है वो स्टेज से ही है. फिर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कभी फ्रीलांसिंग किया, फिर धीरे धीरे आज मैं अपना खुद का ग्रुप चला रही हूँ. मेरे कम से कम 5 to 8 म्यूजिशियंस मेरे साथ में रहते हैं.
1: आपने स्कूल से शुरू किया अपना सफ़र और आज आप अपना खुद का एक म्यूज़िक ग्रुप चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो पहली बार जब आप मंच पर आई, यानी आपने स्टेज शेयर किया, तो उस समय क्या दिमाग में आया था, किस तरह की अनुभूति थी आपके मन में?
0: बहुत सारा डर. जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर इतने लोगों से कांटेक्ट करते हो, स्पेशली आई कांटेक्ट जब आप करते हो, तो बहुत सारा डर होता है. हाँ, बट उसके साथ में एक एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ, आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करने का मौका मिला है. और मुझे लगता है एक परफॉर्मर की भूख ही होती है स्टेज और उस परफॉर्म करना.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आपको पता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गायकी छुपी थी, ऐसी हमारी बहुत सारी सखियां हैं जो अंदर ही अंदर गुनगुनाना पसंद करती है, लेकिन वो जानती है कि वो बहुत अच्छी सिंगर है, बनना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है। तो उनसे आप क्या कहेंगी अगर उनके अंदर भी एक छोटी सी गायिका छुपी हुई है तो?
0: मैं कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम इजीली बहुत अपने आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं. तो बहुत इजी है आज के समय में. और अगर आपका कोई फीमेल ग्रुप है, आप लोग सारे बहुत सारे लोग गाते हो, या तो आप एक टीचर को हायर कर सकते हो और अच्छा सीखने के लिए, या फिर आपकी किटीज़ में ही आप क्यों नहीं म्यूज़िक इवेंट्स करते हो.
1: छोटे छोटे म्यूजिक इवेंट्स का आप हिस्सा बनिए और दूसरों को
0: बिल्कुल
1: सुनिए और अपनी भी सुनाइए उन्हें,
0: राइट
1: है ना?
0: राइट सही.
1: आगे आपके प्लान्स क्या है, आगे आप क्या करने वाली हो?
0: अभी तो मैं मोस्टली वेडिंग्स में ज़्यादा इवेंट्स करती हूँ जो कि ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं. मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा गाती हूँ अभी. और इसी से रिलेटेड मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं आगे एग्जीक्यूट करना चाहूँगी. उन पर मैं बहुत सारा भी काम भी कर रही हूँ.
1: तो क्या सचमुच कोई महिला आकर इसमें अपना करियर बना सकती है?
0: बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत पैसा है. जो एंटरटेनमेंट फील्ड जो है हमारा, बहुत ज़्यादा पैसा है. बस ये है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो और कितनी जगह परफॉर्म कर सकते हो, या कितना अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हमें अर्निंग में काम कर सकते हैं. अगर आप परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, तो आप म्यूज़िक सिखा सकते हो. आप घर पर म्यूज़िक सिखा सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, देन ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो. बहुत सारे यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज़ में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी इंडियन संस्कृति के साथ में, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं. और उन्हें सबसे बेस्ट तरीका वही लगता है कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के साथ में उन्हें जोड़ा जाए. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे आपको अगर आप म्यूज़िक सिखाना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, आप परफॉर्म करना चाहते हैं. आप रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, रेडियो जॉकी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं.
1: यानी रास्ते बहुत सारे हैं, बस अगर आपने कहीं से संगीत सीखा हुआ है और भले वक्त हो गया है, लेकिन
0: राइट,
1: संगीत कहीं छूटता नहीं
0: छूटता
1: है।
0: नहीं.
1: तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, उसे लोगों तक लेकर आइए ताकि आप भी खुश रहिए और लोगों को भी खुशी दीजिए। तो हमारी सखियां जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहती है, उनके लिए आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है।
0: थैंक यू सो
1: लेकिन
0: मच.
1: जाने से पहले कोई एक छोटा सा गीत हमारी सखियों के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल.

0: बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
1: क्या बात है, बहुत मधुर आवाज हेमा जी की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस तरह से हमारी सखियों को कहा है कि वो इस क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना सकती है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। हमारी सखियों से हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत
0: थैंक यू
1: धन्यवाद।
0: सो मच, थैंक यू, थैंक यू।
1: तो सखियों, ये था हमारा क्रम, मेरी उड़ान। उम्मीद करती हूँ

0: सखियों, बारिश के मौसम में सिर्फ कपड़ों और बालों की ही नहीं, हमारी त्वचा को भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। नमी और उमस की वजह से चेहरा चिपचिपा और बेजान सा लगता है। तो आज के रूपलावण्य में जानते हैं कुछ आसान और असरदार फेस पैक जिन्हें आप घर पर ही बना सकती हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकती हैं। सखियों, सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच दही और 1/2 चम्मच शहद। इन तीनों को मिलाकर 15 मिनट चेहरे पर लगाइए। ये त्वचा की हल्की एक्सफोलिएशन करता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाने में मदद करता है। और सखियों, आजकल ये फेस पैक काफी पसंद किया जा रहा है। अगर बारिश में चेहरा बार बार ऑयली हो जाता है तो सखियों, उसके लिए एलोवेरा जेल में थोड़ा सा खीरे का रस और 4 से 5 पुदीने की पत्तियों का पेस्ट मिलाकर 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर रखिए। इससे त्वचा को ठंडक तो मिलेगी ही सखियों, ताजगी भी महसूस होती है। और सखियों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए 1 चम्मच ओट्स का पाउडर, 1 चम्मच दही और थोड़ा सा गुलाब जल, इसे मिलाकर अपने चेहरे पर 15 मिनट तक लगा के रखिए और हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लीजिए। इससे त्वचा साफ और मुलायम होती है सखियों। अब एक छोटी सी बात, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और पहली बार अगर इस्तेमाल कर रही है ना तो पैच टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सखियों, इन फेस पैक के जरिए आप अपनी त्वचा में अपने आप निखार महसूस करेंगी। और हम आपको सुनाते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।
1: देखो देखो जानम, हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया।

सखियों, बारिश की बूंदे, ठंडी ठंडी हवा और रसोई से आती गर्मा गर्म खाने की खुशबू, बस मौसम का मजा दुगना हो जाता है। लेकिन हर बार पकोड़े ही क्यों? आज बनाते हैं कुछ नया, स्वादिष्ट और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला कुरकुरा पालक कॉर्न रोल। जी हाँ सखियों, इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए। 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न, 1 कप बारीक कटा पालक, 2 उबले हुए आलू, 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, 2 ब्रेड स्लाइस का चूरा या फिर ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, रोल शीट या फिर ब्रेड के स्लाइस। साथ ही हमें चाहिए शैलो फ्राई करने के लिए तेल। सखियों, आप इसे बनाने की विधि भी नोट कर लीजिए। 1 बोल में उबला हुआ कॉर्न, पालक, आलू, मसाले और ब्रेड क्रम्स मिलाकर मिश्रण तैयार कर लीजिए। अब रोल शीट या ब्रेड में ये मिश्रण भरकर रोल बना लीजिए। हल्का सा कॉर्नफ्लोर का घोल लगाकर बंद कर दीजिए और तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेक लीजिए। गर्मा गर्म रोल्स को पुदीने की चटनी या फिर दही की डिप के साथ परोस दीजिए। सखियों, ये रेसिपी स्वाद के साथ साथ पौष्टिक भी है और बारिश की शाम के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अगर बच्चे हरी सब्जी खाने से कतराते हैं ना, तो इस रोल में कद्दूकस किया हुआ पनीर और गाजर भी मिला सकती हैं आप। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और इसका पोषण भी बढ़ जाएगा। तो सखियों, इस बारिश में पकोड़ों से हटकर

0: शिक्षा, जब भी मौसम बदलता है ना, उसका सीधा असर हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम सभी अपने घर में छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ दवाइयाँ जरूर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी एक्सपायरी डेट देखी है? अक्सर दवा काम आने के बाद अलमारी या फिर फर्स्ट एड बॉक्स में रखी रह जाती है और महीनों तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसे में अनजाने में एक्सपायर्ड दवा का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। सखियो, ऐसी दवाएं असर कम कर सकती हैं और कुछ मामलों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए हर महीने सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स की जांच जरूर कीजिए। जिन दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो उन्हें अलग कर दीजिए और दोबारा इस्तेमाल ना करें। सखियो, एक और बात, दवाइयों को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखिए, क्योंकि गर्मी और नमी भी उनकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और बिना डॉक्टर की सलाह के पुरानी दवा किसी और को कभी न दे। याद रखिए सखियो, सही समय पर सही दवा ही इलाज बनती है, लेकिन एक्सपायर्ड दवा लापरवाही का कारण बन सकती है। इसलिए आज ही अपने घर की दवाइयों की एक छोटी सी जांच जरूर कीजिए। ये 5 मिनट की आदत आपके परिवार की सेहत की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। तो सखियो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और महिला सभा कार्यक्रम सुनते रहिए। आज के कार्यक्रम में सखियो बस इतना ही। इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए

0: 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रीति देवलो और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रभाती मालवी लोकगीत से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रीति देवले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है एक भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म गीत का कार्यक्रम, जिसमें आपको सुनवाएंगे पहला गीत अरिजीत सिंह और रूपाली मुखी की आवाज में फिल्म बधाई दो से।

अमित त्रिवेदी का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल अरिजीत सिंह और रूपाली मोघे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बधाई दो से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा।

प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारोत्तोलक ने स्नेच स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। श्री मोदी ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सर्वेश अनिल कुशारे को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा है उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा।
0: मंत्री ने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल, भोजन और पानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी आवश्यक सावधानियां अपनाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8

जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 28 से 30 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से जिले के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 28वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीच मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have.

0: accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ।

0: बनेगा। पंजाब, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहाँ से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री

शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे गए पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइशी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण के द्वारा गाए हुए गीत से, जो है फिल्म पापा कहते हैं से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है राजा बाजार बिटिया से, सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी ने हमें पत्र लिखा है। इसके अलावा एक पत्र हमें मिला है महसौल सीतामढ़ी बिहार से, नाज मंजिल से कुछ श्रोताओं ने हमें लिखा है। ये हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बहू बाबू आरिज वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवारा और जिला मुजफ्फरपुर से फैसल शेख, नुजहत जहां नाज, शेखटोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए ये प्रस्तुत है ये वाला गीत।

संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पापा कहते हैं से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसकी फरमाइश हमें मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नहगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर परी। और इन्होंने फरमाइश की है गीत की, जो है यादों की बारात फिल्म से। इनके अलावा एक और पत्र हमें मिला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डोमराव से वलियोला अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डोमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कि अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म यादों की बारात से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बैराग से, आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धामड़ी मानोरा जलाबाशिम से। लिखने वाले श्रोता हैं पेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुजा डेरे, गुलशन और अमोल डेरे। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें लिखा है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक ने। आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बैराग से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म खुशबू से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है ग्राम महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोडकर की तरफ से। इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आरडी बर्मन का संगीत गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुशबू से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हमजूली से, जिसे जिसकी फरमाइश की है लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और उनके पूरे परिवार ने। इसके अलावा महाराजा रेडियो श्रोता संघ से हमें लिखा है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। इनका पत्र हमें मिला है खंडवा ग्राम लोहारी से। और खुर्दी रोड मानपुर से हमें लिखा है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हमजोली से। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी यहीं संपन्न होता है। हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप इसी तरह अपने पत्रों को हमें भेज सकें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल पिन कोड 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल तथा पानी का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। विश्व प्रकृति

संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया और मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज के सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुन सकेंगे रात 8:15 पर। रात 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी रात 10:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है प्रीति देवले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रभाती मालवी लोकगीत से।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आगाज कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युव

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाओं की आवाज और आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी।
1: और मैं हूं मार्गेशा। स्वागत है आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन और आज के दिन बात होती है एक खास शहर की। तो आज हम मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन और धार्मिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर आपके लिए लेकर आए हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
0: श्रोताओं, इसी के साथ आज हम आपको देंगे दिन विशेष की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और सुनाएंगे आपको बड़े ही खूबसूरत से गीत। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की आज के दो सवालों के साथ।
1: तो इन दोनों सवालों के जो उत्तर हैं वो आपको कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि भारत में हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना।
0: आपका दूसरा सवाल है, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है।
1: तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर कार्यक्रम के अंत तक तो ढूंढ ही लेंगे। तो फिर आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर बिना रुके दिन रात कैसे काम करता है? इसका एक बड़ा कारण है हमारा लिवर। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये भोजन को पचाने में मदद करता है, शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है और हमें स्वस्थ बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर यही लीवर जो हमारे शरीर में इतने सारे काम कर रहा है, यही अगर धीरे धीरे बीमार होने लगे, धीरे धीरे कमजोर होने लगे और अपना काम थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा स्लो करने लगे और इस बात की हमें भनक भी ना लगे तो क्या होगा? इसी वजह से हम आज बात कर रहे हैं और आप सभी को बता रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में।
1: तो दोस्तों, हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना, समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना और इस बीमारी से बचाव के तरीकों की जानकारी देना है।
2: अब हम ये तो समझ गए कि हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है, लेकिन असली में हेपेटाइटिस होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो श्रोताओं, हेपेटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में सूजन इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके कारण हो सकता है कि सबसे सामान्य कारण हो सकता है एक वायरल इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये चीज़ें हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि हेपेटाइटिस एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई।
1: इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई अक्सर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। लेकिन दोस्तों, हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, असुरक्षित यौन संपर्क और संक्रमित मां से बच्चे में फैल सकते हैं।
2: और श्रोताओं, सबसे ज्यादा चिंता की बात तब होती है क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों को कई वर्षों तक पता ही नहीं चलता, उनके अंदर उनको कोई लक्षण महसूस ही नहीं होते। और जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है। इसीलिए इस हेपेटाइटिस बी और सी को अक्सर हम साइलेंट

0: डिसीज कहते हैं, यानी कि चुपचाप धीरे से हमला करने वाला।
1: सही कहा तुमने वैष्णवी, लेकिन जो बाकी हेपेटाइटिस के प्रकार हैं उसके लक्षण दिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके आखिर लक्षण होते क्या क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत में कई लोगों को कोई लक्षण वैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कुछ सामान्य लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे लगातार थकान महसूस होना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा बार बार लगते रहना या नॉशियस फील होना, पेट के दाहिने हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होना, और सबसे जरूरी आंखों और त्वचा का पीला पड़ जाना, यानी कि पीलिया हो जाना।
0: यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो बिना देर किए आप अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी डॉक्टर आपके आसपास हो उनसे संपर्क जरूर करें और इससे रिलेटेड जो भी आवश्यक जांचें होती है वो जरूर कराएं। अब हमने ये भी जान लिया कि हेपेटाइटिस क्या होता है मार्गेशा, हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन अब ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
1: सही कहा तुमने। तो अब सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, ये सुरक्षित और प्रभावी है तथा गंभीर संपर्क से हमें बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन तथा शुद्ध पानी का सेवन करें, किसी और की सुई, रेजर या नेल कटर या टूथब्रश का उपयोग ना करें, यानी जो भी हमारा बॉडीली फ्लूइड है उससे संपर्क में आया हुआ कोई भी वस्तु है उसको डायरेक्ट टच में ना लें। इंजेक्शन हमेशा नया और स्टेरिलाइज सुई ही हमेशा लगवाएं। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होने पर सुनिश्चित करें कि जो रक्त आपको चढ़ाया जा रहा है उसकी जांच हो गई है। यदि डॉक्टर सलाह दे या जोखिम हो तो समय समय पर हेपेटाइटिस बी और सी की जांच भी जरूर करवाएं।
0: दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, हेपेटाइटिस सी का प्रभावी इलाज भी उपलब्ध है और हेपेटाइटिस बी को भी उचित दवाइयों और नियमित निगरानी में नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि क्योर किया जा सकता है। इसीलिए डरने की नहीं बल्कि समय समय पर जाँच कराने की, उसका ट्रीटमेंट लेने की और अपने आस पास के लोगों को इसे जागरूक करने की आवश्यकता है।
1: और दोस्तों, इसी कारण से इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। जितना जल्दी बीमारी की पहचान होगी उतना ही जल्दी उसका उपचार शुरू होगा और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकेगा।
0: और इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें ये सीख लेनी है कि हम अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखेंगे, समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएंगे, टीकाकरण को अपनाएंगे, आजकल तो हेपेटाइटिस से जुड़ी वैक्सीन्स भी आ गई हैं, और अपने परिवार तथा समाज को भी हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक करेंगे।
1: तो दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ लीवर ही स्वस्थ जीवन की असली पहचान है।
0: चलिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज के अगले गीत के साथ।

0: दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये दिन हमें याद दिलाता है कि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन आखिर इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आइए जानते हैं, क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि प्रकृति संरक्षण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे लगाना होता है, लेकिन वास्तव में ये उससे कहीं अधिक होता है। इसमें जंगल, नदियाँ, झीलें, वन जीव, मिट्टी, हवा और जल, ये सब का संरक्षण शामिल होता है, क्योंकि प्रकृति का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
0: सही कहा वैष्णवी। आज जिस तरह तेजी से जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है, वो हमें सभी के लिए एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। गर्मी का बढ़ता स्तर, अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं इसी का परिणाम है।
1: और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रकृति का नुकसान सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, खेती, जल स्रोतों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आज हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो कल स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी भी दुर्लभ हो सकता है। तो श्रोताओं, क्या केवल ये, आपको क्या लगता है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब संरक्षण करना केवल बड़े संगठनों का या सिर्फ नियुक्त सरकार का काम है? मार्गीशा, तुम्हें क्या लगता है?
0: वैष्णवी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे कहते हैं ना कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है, तो शायद यहाँ पर भी वो लागू होता है। प्रकृति की रक्षा करना हमारे अपने घर से शुरुआत होती है दोस्तों। जैसे कि एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, पानी और बिजली का बचाव करना

0: और कचरे को अलग अलग करके सही तरीके से उसका निपटारा करना, यानी कि बायोडिग्रेडेबल अलग, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, मेडिसिनल वेस्ट अलग, आसपास अपने घर के अपने एरिया में आसपास जितना हो सके उतनी अपनी तरफ से सफाई रखना, पक्षियों और जानवरों के प्रति संवेदनशील रहना, अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल की हम बात कर रहे हैं।
1: दोस्तों, यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव बन सकते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा बदलाव किसी एक छोटे कदम से ही शुरू हुआ था। यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो पूरी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकता है।
0: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति बिना किसी भेदभाव के हमें सब कुछ देती है, चाहे वो स्वच्छ हवा हो, पीने का पानी हो, भोजन हो, औषधियाँ हो, यहाँ तक कि हमारा जीवन ही हो। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमें मिल रहा है, जितना शुद्ध हमें मिल रहा है, उतना ही हम रिटर्न देने की कोशिश करें और प्रकृति के प्रति अपना आभार केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से कुछ करके दिखाएं।
1: सही कहा तुमने। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस केवल एक दिवस मनाने का अवसर नहीं है दोस्तों, बल्कि अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाने का भी एक संकल्प लेने का दिन है दोस्तों। तो आइए हम सभी मिलकर ये वचन ले कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ेंगे और प्रकृति के संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान भी देंगे।
0: और वैसे ये सभी बातें तो हम अक्सर रोज सुनते रहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बार बार हम इसे सुनते भी रहते हैं तो कम से कम एक बार या दो बार इसे अपने जीवन में उतार के देखें, ताकि जो हमने सुना है भले हम उसे रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन करके देख लीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने वैष्णवी। और जैसे लोग कई बार प्रदूषण की कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये जो प्रदूषण का कारण है, कहीं ना कहीं उनकी भी एक्टिविटीज इस प्रदूषण के हिस्सेदार हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये कौन से काम है, ये आप अगर बैठ के कभी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि प्रकृति जब सुरक्षित रहेगी तभी हमारा जीवन समृद्ध रहेगा।
0: और श्रोताओं, एक पेड़, एक संकल्प और एक जिम्मेदार नागरिक, यही हमारे देश के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: तो चलिए दोस्तों, हम भी संकल्प ले कि प्रकृति का संरक्षण करेंगे और आप भी बैठ के जरा सोचिए कि आप अपनी ओर से कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप पर्यावरण को बचा सके। इसी सोच के साथ आइए फिर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज है मंगलवार और आज बात होती है हमारे शहर की। तो दोस्तों, आज के हमारे शहर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शहर सतना की। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित सतना भारत का एक प्राचीन शहर है, जो जाना जाता है अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए।
3: श्रोताओं, ये जिला कृषि उत्पादों और वस्त्रों के वितरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है मध्य प्रदेश में। वर्ष 1948 में गठित सतना जिले का क्षेत्रफल 7,502 वर्ग किलोमीटर है।
2: दोस्तों, सतना जिला बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। रीवा जिले के शासकों ने सतना जिले के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार के अधीन सामंत तो जो पश्चिम क्षेत्र था, उसके भी एक छोटे हिस्से में वहां पर शासन किया गया था।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरण में इतिहासकारों ने बताया है कि बघेलखंड क्षेत्र ने भारतीय कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जब हैया, कलचुरी और चेदी वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उस वक्त की हम बात कर रहे हैं।
2: गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सतना जिला कला और वास्तुकला के शिखर पर पहुंचा था। बाद में दिल्ली के सुल्तानों और भारत के मुगल सम्राटों ने 1707 तक इस जिले पर शासन किया।
3: श्रोताओं, सतना जिले के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश। इसके पूर्व में रीवा जिला है, दक्षिण में उमरिया और कटनी जिला है तथा पश्चिम में पन्ना जिला स्थित है। ये जिला रीवा मंडल का हिस्सा माना जाता है।
2: अगर हम भौगोलिक दृष्टि से सतना की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें टोंस नदी, सोन नदी और पैसुनी नदी जिले की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
3: इसके बाद अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो सतना जिला की अर्थव्यवस्था सीमेंट निर्माण, हथकरघा बुनाई, आटा, तिलहन, पिसाई और कृषि एवं कपड़ा उत्पादों के वितरण पर निर्भर है।
2: यानी कि दोस्तों, सतना ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक इन दृष्टि से भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अब शहर में टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं, यहाँ की बोली क्या है, यहाँ का खान पान कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे गीत के उस पार।

0: तो दोस्तों, गीत के पहले हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर सतना की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सतना में पर्यटक स्थल कौन से हैं, यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ के त्यौहार कैसे होते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है और मध्य प्रदेश में ये शहर कितना फेमस है।
1: सही कहा, सतना जिले में धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल हैं और इसमें सबसे पहले नाम आता है चित्रकूट का। चित्रकूट मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सतना जिले में स्थित एक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पूर्वातिक महत्वपूर्ण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित कई मंदिरों और स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रामायण को तो हम सभी जानते हैं और माना जाता है कि जब राम और सीता और लक्ष्मण जी ये जब वनवास के लिए निकले थे तो इन्होंने चित्रकूट के जंगलों में करीब 11 साल व्यतीत किए थे।
0: इतना ही नहीं, चित्रकूट का वर्णन रामायण में इस प्रकार भी है मार्गेशा, कि जब श्री राम ने, हम सब ने वो कथा सुनी है ना, कि उनके भाई जब भरत जी जब उनको बुलाने के लिए आए थे और फिर उन्होंने उनको अपनी चरण पादुका दे दी थी, तो वो जो स्थान था, वो जो जंगल था, ऐसा कहते हैं कि वो जंगल चित्रकूट का ही जंगल था। तो हम कह सकते हैं कि ये इतनी सुंदर वर्णन है इसका रामायण में। और दोस्तों, ये जगह भी उतनी ही खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप हरिद्वार या ऐसा कोई जगह होती है ना, जहाँ पे राम झूला भी है, लक्ष्मण झूला भी है और ढेर सारे मंदिर, ढेर सारे आश्रम भी हैं।
1: और इसी के साथ कहा जाता है कि चित्रकूट के जो घाट है वो भी काफी
0: बहुत प्रसिद्ध है।
1: और चित्रकूट में ही आपको कई अलग अलग पौराणिक मंदिर भी देखने को मिलेंगे और यहाँ की हिल्स जो है वो भी काफी प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल, और यहाँ पे चित्रकूट के साथ और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान आता है मैहर। मैहर शारदा माता का स्थान है। मैहर में त्रिकुटा पहाड़ी है जो कि सतना में है, उसकी चोटी पर शारदा देवी का एक मंदिर है जो शहर के केंद्र से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर अपने आप में ही इतना वो है कि विशाल है कि कम से कम 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के भक्त माँ के दर्शन के लिए जाते हैं और साल भर में, मतलब नवरात्रि की बात करें साल में एक बार, तो लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में एक समय पर दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं।
1: हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि ये 21 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: और यहाँ पर नवरात्रि के समय, जैसे तुमने कहा, कई सारे श्रद्धालु आते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि अल्हा उधर करके दो योद्धा थे जो माता रानी के बहुत भक्त थे और आज भी ये माना जाता है कि सबसे पहले यही दोनों देवी के दर्शन करते हैं।
0: बिल्कुल
1: अनोखी बात है ना वैष्णवी,
0: एक ही स्थान पे इतने दो इम्पोर्टेंट स्थान भी है सतना, इसीलिए इतना प्रसिद्ध है। और हम आपसे कहेंगे कि ये सबसे अच्छा मौसम होता है बारिश और ठंड सतना घूमने जाने के लिए, चित्रकूट घूमने जाने के लिए।
1: और दोस्तों, अगर हम सतना के और पहलुओं की बात करें तो सतना को भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है और इसी कारण से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है।
0: श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत की जो विविधता है वो बहुत फेमस है, तो वैसे ही जैसे हर कुछ किलोमीटर्स पे संस्कृति बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, वैसे ही बोली भी बदल जाती है। तो हम सतना की बात करें तो प्रमुख रूप से सतना में वैसे तो हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन क्योंकि ये बघेलखंड का और रीवा संभाग का जिला माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे बघेली भी बहुत प्रमुख रूप से बोली जाती है।
1: और जैसे तुमने बोली की बात की कि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बदलती रहती है, वैसे ही खान पान भी बदलता
0: रहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: और अगर हम खान पान की ही बात करें तो मध्य प्रदेश का जो स्वाद एक अनोखा जो स्वाद होता है ना, जैसे तीखापन, लहसुन का उपयोग होना, ये यहाँ पर काफी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, इमरती जो है यहाँ की काफी फेमस है, और अगर आपको चाट पसंद है तो हाँ, आपको यहाँ की चाट जरूर ट्राई करनी चाहिए, वो भी आपको काफी पसंद आएगी।
0: और अगर यहाँ की कल्चर की बात करें तो श्रोताओं, सतना का संगीत हमेशा से केंद्र में रहा है, यहाँ तक कि मैं कहूंगी यहाँ का ही संगीत घराने हैं, मैहर घराना भी उनमें से एक है। यहाँ पे अलग अलग फोक डांस और लोकल पेंटिंग्स

0: काफी फेमस रही हैं।
1: तो दोस्तों वैसे तो ये शहर इंदौर से 711 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के लिए आपको आसानी से ट्रेन या बस की सुविधा मिल सकती है। तो अगर आप मध्य प्रदेश को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट पौराणिक और धार्मिक स्थानों में है तो आपको सतना जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो स्थल है वो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो आप भी जल्दी से सतना को अपनी ट्रेवल लिस्ट में ऐड कर लीजिए।
0: तो श्रोताओं चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, ये था आज का युवाणी कार्यक्रम। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो दोस्तों, और भी हमने जैसे अलग अलग विषय पर आज चर्चा की ही, और अब समय आ गया है कि हम आपको आज के सवालों के उत्तर बता दें। तो पहला प्रश्न था कि भारत में हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, और इसका सही उत्तर है गोवा।
1: श्रोताओं, आपका दूसरा सवाल था कि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के शहर श्योपुर में स्थित है।
0: सही कहा वैष्णवी। तो दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही था। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ दीजिए मार्गिशा
1: और वैष्णवी को इजाजत। आप सभी को हमारा नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पापा कहते हैं फिल्म के इस प्यारे से गीत से। जिसे गाया है उदित नारायण ने। जावेद अख्तर की शब्द रचना,

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: दीवाना। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम के युगल सुर में, शब्द रचना समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। और श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
1: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
1: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
1: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
1: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
1: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
1: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
1: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
1: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मित व्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं, मित व्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना और अनावश्यक खर्च से बचना ही मित व्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
0: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब। मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता बताओ बेटा तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी
0: बोलो लता क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती?

0: उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। 2 ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बहन जी।
6: नमस्ते शिखा।
7: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते, यहाँ बैठिए
6: जी,
7: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
6: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप,
7: मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
6: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
7: हाँ ये तो है।
6: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
7: राम राम दादा।
8: हाँ,
7: कैसे हैं आप?
8: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
7: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
8: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
7: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
8: अच्छी? और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
7: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी दीदी।
8: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
7: जी।
0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
7: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
2: दीदी लता। दीदी लता।
7: लता?
9: जी दीदी।
7: क्या ये लता?
9: जी दीदी।
7: अरे नहीं।
9: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
7: अच्छा,
9: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
7: अच्छा
9: जी दीदी।
7: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है

0: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
0: हाँ दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
0: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं? इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
0: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
0: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी।
0: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
0: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
0: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
0: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
0: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो।
0: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
0: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देते हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
1: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ।
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौर की गाई रचनाएं।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौर की गई गजलें।

0: गुलजार की रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया रूप कुमार राठौड़ ने। श्रोताओ, सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं रूप कुमार राठौड़ को।
1: निकल जाता हूँ आकाश उतर के, कहकशां छू के निकलती है जो एक पगडंडी अपने पिछवाड़े के संतूरी सितारे की तरफ। दूधिया तारों के पांव रखता चलता रहता हूँ यही सोच के मैं, कोई सैयारा अगर जागता मिल जाए कहीं, एक पड़ोसी की तरह पास बुला ले शायद और कहे, आज की रात यहीं रह जाओ, तुम जमीन पर हो अकेले, मैं यहां तन्हा हूं।

जाम पे रुकना आगे खला है। मार्स से पहले

0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे थे रूप कुमार राठौड़ की गाई गजलें। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए सुनिए देवीलाल भैरू जी बोराना के गाए मालवी लोकगीतों को।

श्रोताओ, लोक संगीत में आप सुन रहे हैं देवीलाल भैरू जी बोराना के गाए मालवी लोकगीतों को। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में अगली लोक रचना।

0: तो आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं देवीलाल भैरू जी बोरा ने गाए मालवी लोकगीतों को।
1: बलिहारी बलिहारी गुरु

को सु तुम्हारो हसलो सतगुरु दियो जगाय शब्द दियो सुनकारी। जुगा जुगा को सु तुम्हारो हंस

आपन होते जुग संसार में कौन करता राय भोगता दुख भारी। आपन होते जुग संसार में

गुरन जी ठाको मोचा से चोक बुराय गुरन जी थाने बलिहारी। तन मन धन कुरे

0: श्रोताओ, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवीलाल भैरू जी बोराना के गाए मालवी लोकगीतों को। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय

0: न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानवाधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हेपेटाइटिस और अन्य लीवर से जुड़ी हुई बीमारियाँ और उनका उपचार। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अमित अग्रवाल हेपेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इसके साथ ही आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए दो सात

1023 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आइए श्रोताओं, अब विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का। 7:20 पर कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। आज की बात होगी प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा रात 8:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रगीत में रात 9:15 पर और आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम मन भवन में रात्रि 10:00 से।

उर्दू कार्यक्रम कहकशा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत में विदुषी श्रुति साड़ोलीकर का गया राग नायकी कानड़ा हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। यह था विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज लगभग 2480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन से जुड़े गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों की रिहाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के नवनिर्मित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। नियमित रेल सेवाएं शुरू। और प्रदेश भर में कल गुरु पूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व मनाया जाएगा।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लगभग 2480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18,74,00,000 रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
1: महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई।
0: श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आईटी पार्क स्थापना योजना के लिए 595 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही कैबिनेट ने रिहंद और मलारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं, आईटी पार्कों की निरंतरता, महिला सशक्तिकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 9 विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्टेशन से नियमित यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया।
2: 12 साल में जो हुआ वो भूतों न भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस,
0: मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और करोन, निषादपुरा, छोला, भानपुर, अयोध्या, बाईपास और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक और अधिक सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन उनके व्यक्तिगत सपनों से भी कहीं अधिक था। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों में दृढ़ रखने और राष्ट्र और तथा समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य पर्यटन विकास निगम की समय

0: समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने भगोरिया उत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मार्ग सुविधा केन्द्रों के साथ अस्पताल, पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसादी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना की भी शुरूआत होगी, जिसके तहत 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खंडवा में श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के खंडवा पहुंचने का अनुमान है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया,
1: इस वर्ष हमारे गुरु पूर्णिमा का अवसर और विशेष है, क्योंकि इस बार दादाजी के मार्बल के मंदिर का नव निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वही व्यवस्था जो हर साल होती है, इस साल भी रखी गई है। साथ में पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट्स सबके सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, क्राउड का कोई इश्यू ना आए और जो भी हमारे भंडारे हैं वो स्मूथली पूरे शहर भर में चलते रहें।
0: और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल भी मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद परिवार सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। नीमच में संचालित दस्तक अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की समीक्षा की गई। देवास जिले के सोनकच्छ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और शिवपुरी जिले के शासकीय अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहना का प्रियंका की राम राम। भाई बहना, खेती बाड़ी में सही समय पर बीज और खाद मिली जाए तो अपनी फसल ना लहलहाए, और असज हमारी जो जिंदगी गाड़ी है उका भी अगर सही दिशा देना शुरू, सही समय पर सही जानकारी को होनो भी बहुत जरूरी है। आज अपन बात करांगा एक ऐसी योजना की जिन्हें देश का करोड़ों गांव और किसान परिवार की तकदीर बदल दी है। जी हाँ, आज को अपना विषय है प्रधानमंत्री जनधन योजना। भाई बेना, पहला का टेम में गांव नामा भाई बेना सोचता था कि जेब में ज़्यादा रुपया तो है नहीं, तो बैंक वाला खातों कैसे खोलेगा, और इना शर्म का मारा खातों खुलवाना नहीं जाता था। और हजू ऊपर से ये कागज के कार्रवाई उससे भी डर लगता था कि कहीं मालूम कहीं कहीं कागज मांगेगा, फिर कहाँ कहाँ अपना साइन करनी पड़ेगी। आना सामयिक डर भी उनका बने रहता था, क्योंकि पहला का टाइम में जो भाई बहना था वे भणिया लिखिया भी कम होता था। इन्हीं समस्या का समाधान स्वरूप शासन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत करी। एकमा सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजना का तहत हमारे जो खातों है वो जीरो बैलेंस यानी शून्य बैलेंस पर खुली जाए। अगर तुम्हारा खाता में एक रुपयो भी नहीं है, तब भी तुम तुम्हारा बैंक से तुम्हारा कोई जुर्मानो नहीं लगेगा और यो खातो तुम आसानी से खुलवा सकता हो। इन योजना का अंतर्गत तुम्हारा सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता रहेगी। तुम अपना नजदीकी बैंक में जाइन या फिर डाकघर या फिर बैंक मित्र कन जाइन यो खातो आसानी से खुलवा सकता हो। अब तुम सोच ही रहा होगा कि भाई खातो तो खुलवा ही लो, पर हमारा जो खेती बाड़ी का काम नाम है इको कहीं फायदो। तो भाई बहना, सबसे पहलो फायदो तो यो है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है या फिर खाद की सब्सिडी या फसल बीमा की राशि है, ये सगली जो राशि है वह सीधा तुम्हारा खाता में आई जाएगी। एक में कोई भी बिचवानी में नहीं रहेगो। इना खाता का साथ तुम्हारा एक एटीएम कार्ड भी मिलेगो जिका रुपए डेबिट कार्ड गए। इससे तुम कभी भी जरूरत पड़ना पर रुपया निकाली सकता हो, चाहे अपना खाद बीज खरीदना है तो उका सा रुपये तुम रुपया इससे निकाली सकता हो। अभी का दूसरा फायदा यह भी है कि भाई इकमा 2 लाख रुपया तक को मुफ्त दुर्घटना बीमा भी शामिल है। अगर तुमने अपनो खातो सही ढंग से चलाया, मतलब उकमा तुमने लेन देन सही तरीका से जारी रखियो, तो इकमा जरूरत पड़ना पर समय पर तुम्हारा बैंक 10,000 रुपया तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे। इको मतलब यह है कि अगर तुम्हारा खाता में रुपया नहीं भी है और अगर तुम्हारा अचानक कहीं जरूरत पड़ी गई या बीमारी का लिए तुम्हारा जरूरत पड़ी तो तुम 10,000 रुपया तक निकलवा सकता हो। तो इका में कोई भी साहूकार का आगत हाथ फैलाना से तो यो लागू ना बेहतर है। और साथ जो हमारी गृहस्थी का संभालने वाली हमारी भाई बहना है, वी भी अपना घर की बचत का इना खाता का माध्यम से उपयोग में ली सकती है। अब इकमें बचत की बचत भी होगी और साथ ब्याज भी मिलेगा, तो हुई गयो नहीं फायदो। तो अगर तुमने यो खातो नहीं खुलवाए हो तो फिर जरूर से तुम अपना नजदीकी बैंक का जैन यूना खाता को खुलवाई सकता हो। बात महारा कना नरी सारी है, पर अपन कार्यक्रम में पहला सुनीला यो संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भाई बहना, आसमान में काला काला बादल ना को डेरो है और ठंडी ठंडी हवा का झोंका भी चली रहा है, और जब खेत आड़ी जाए या उसका किनारा से गुजरा तो जो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू है वह भी मन का खूब भाए। और खेती किसानी के अपन अपना बात करा तो अपना जो खेत में फसल है वह भी अब चारों तरफ हरियाली की चादर ओढ़ी हुई नजर आ रही है, और जो कि एक हमारी धरती माँ है ऐसो लागी रही जाना कि उन्हें एक हरी चुनर ओढ़ी राखी है। और हमारो आंगन भी, हमारा पक्षी पशु पक्षी सब एक अलग ही रंग में रंग्या हुई है। तो क्यों नहीं हम इन्हीं चीज को आनंद ला लोकगीत से, और सुना अपन यो प्यारो सो लोकगीत जिका गायो है बेन स्वाति उखले और साथी नाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भेबेना संदेश का पहला अपन स्वाति उखले और साथीना को गायो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। भाई बेना या कहनी तो सबने सुनी होगी कि भाई रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और अभी वर्तमान में बरसात को मौसम है और पानी हमारा मिली रो है, तो उना समय पर हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारा इना पानी का सही उपयोग करना है और इको साथ साथ संरक्षण भी करना है, क्योंकि हमारा खेती बाड़ी का काम काज में सबसे बड़ो योगदान अगर पानी को है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो हमारा ढंग से फसल नहीं होगी और फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी।

0: तो असाम खेत तालाब हमारी खेती का लिए वरदान है और इससे हम पानी की बचत भी कर सकता है। तो इससे जुड़ी अपने चर्चा सुना जिकमा की डॉक्टर नीलम बुनकर से बातचीत करी रही है बेन तुलसा दरगैया। तो सुनाया भेंट वार्ता।
1: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी देखो पानी की जरूरत हम सबको पड़े न, बिना पानी को तो कोई भी काम नहीं हो सकते न हमारी खेती बाड़ी को काम हो चाहे घर गृहस्थी का काम हो, सभी काम में हमको पानी की बहुत जरूरत पड़े। तो हमारी खेती में हम तालाब कसा बढ़ी सकान, खेती को वरदान रहे तालाब में पानी की बचत कैसे करी सकान, इना सब बारा में जानकारी देने के लिए आज हमारा साथ छे डॉक्टर नीलम बुनकर, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इंदौर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर सी। तो डॉक्टर नीलम बुनकर जी आपको कार्यक्रम में स्वागत छे। राम राम।
2: राम राम मैडम।
1: डॉक्टर नीलम जी जसो की अभी हमने बात करी कि खेती में खेती को चाहे कहीं पर भी पानी तो बहुत जरूरी छे, तो खेत को तालाब किस प्रकार से बनाई सका, नौका पानी की बचत किस प्रकार से करी सकान, तो सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई ने ये बताओ कि खेत तालाब से काई मतलब छे, यानी खेत तालाब काई हो।
2: मैं किसान भाइयों का पहले तो स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मैडम जैसे आपने पूछा कि जल संचयन होता क्या है, खेत तालाब से तात्पर्य क्या है।
1: हाँ हाँ।
2: खेत तालाब ये जल संचयन की प्रक्रिया है, इसको हम फार्म पॉन्ड भी कहते हैं। फार्म पॉन्ड का मतलब है अपने ही खेत के निचले हिस्से में छोटा तालाब बनाना।
1: हाँ हाँ।
2: जो कि तृप्त कर सके ताकि जो रवि की फसलें आती हैं उसमें ये उपयोगी तरीके से फसलों को उपयोगिता पहुंचा सके। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताना चाहूंगी। इसके तीन बड़े फायदे हैं। पहला फायदा कि सूखे से बचाओ, यानी कि जुलाई अगस्त में जब बारिश कम होती है तब फसल सूख जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि भूजल का रिचार्ज करना। भूजल स्तर जो आज हम सुनते आ रहे हैं विश्व स्तर पर या भारत स्तर पर कि भूजल स्तर घट रहा है, उसको भी ये बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है ये अतिरिक्त कमाई भी देता है। जो हमारा खेत तालाब है उसमें मछली पालन, बतख का पालन, कुछ सब्जियां भी लगाकर अतिरिक्त कमाई किसान भाई कर सकते हैं।
1: अच्छा, जैसा कि खेत तालाब के बारे में आपने जानकारी दी कि अपन पानी की बचत कर सकान, तो अभी जो पानी नहीं आएगा तो उस समय अपन ही पानी का उपयोग कर सकान, तो खेत तालाब बनाते समय हमका किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए।
2: मैम सबसे पहले बताना चाहूंगी कि फार्म पॉन्ड बनाते वक्त या खेत तालाब बनाते वक्त हम कुछ बहुमूल्य बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। उसमें सबसे पहले हम जगह का चयन करते वक्त खेत का सबसे निचला कोना चुनिए, जहां बरसात का पानी ढलान की वजह से आता हो। उसमें किसी भी तरीके की अतिरिक्त हमें और भी जरूरतों का इस्तेमाल हम कर सकें। दूसरा है मिट्टी किस प्रकार की है, क्योंकि जिस तरीके की मिट्टी होगी उसी से उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता और घटता रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका ढलान। किनारों को लगभग 1:1 में अनुपात में हम ढाल देते हैं, नहीं तो मिट्टी धस जाती है और पानी भरने और निकलने के लिए हम इनपुट और आउटपुट पाइप भी जरूर लगाएं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने वाला है कि इसका साइज क्या होना चाहिए। लगभग 1 एकड़ खेत के लिए 30 लंबाई, 30 चौड़ाई और 10 गहराई, 10 फीट गहराई का हम फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें कि करीब 2 लाख लीटर पानी जमा होगा। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, जिसमें कि सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है कि मिट्टी बार बार कट कट के आती है और वहां पे आके जमा हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी देखी गई है इसमें। तो इसके लिए हमें जो कुछ मुख्य बिंदु है वो ध्यान देने पड़ेंगे बनाते वक्त। पहला कि इनलेट, जो जहां से पानी सबसे पहले अंदर आ रहा है फार्म पॉन्ड में, उस जगह पे हम सिल्ट ट्रैप बनवा दें, ताकि जो क्योंकि मालवा में बरसात बहुत ज्यादा होती है और जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो सबसे पहले जो उपयोगी स्तर की मिट्टी होती है वो बहकर चली आती है और फार्म पॉन्ड में भरने लग जाती है। इसीलिए सबसे जो शुरू वाला जो फार्म पॉन्ड के पहले वाला जो स्ट्रक्चर कहलाता है उसमें हम 6x6 का छोटा सा गड्ढा बना दें, ताकि ऊपर की जो मिट्टी बहकर आ रही है वो वहीं पे रुक जाए। दूसरी, ये मालवा क्षेत्र के लिए मैं बता रही हूँ, दूसरी चीजें हैं कि ढलान को पक्की कर दें। किनारों को लगभग 1:5:1 की ढाल दे दें, ताकि किनारे में आप खस या नेपियर घास भी लगा सकते हैं, जो कि मिट्टी के कटे

0: आपको रोकती है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि खेत तालाब बनाते समय हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मालवा क्षेत्र का लिए, तो सिर्फ मालवा में कि निमाड़ में भी अपन इसको खेत तालाब बनी सका कि ओका लिए कोई अलग बिंदु छे कहीं?
1: नहीं, ये बिंदु मैंने इसलिए मैम हाईलाइट किया या फिर मैंने बहुत ज्यादा इसको फोकस किया है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। वो क्या करती है, वो बहुत रुकती नहीं है, जल्दी ही बह के आ जाती है। की भी मिट्टी जो हमारे मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो ज्यादातर एरिया में काली मिट्टी होती है। तो
0: अच्छा
1: हम ये जो डिजाइन, ये जो भी मैं आपको मुख्य बिंदु बता रही हूँ या ढलान के जो भी अनुपात बता रही है, ये हम हर जगह लगा सकते हैं।
0: अच्छा तो ये जो खेत तालाब बनाना में खर्चो कितो लगे, न सरकार द्वारा भी कोई अनुदान मिला जी काम खेत तालाब बनाना में?
1: जी बिल्कुल मैम, मिलता है लगभग 20 से 25 हजार रुपए जब हम जेसीबी से हम फार्म पॉइंट की खुदाई करवाते हैं उसमें लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की बलराम तालाब योजना में 40 हजार से 1 लाख तक का अनुदान मिल जाता है। और अगर हम मैं थोड़ा सा बलराम तालाब योजना को और भी संक्षिप्त में थोड़ा बताना, कि इसमें बताया जाता है कि जो लंबाई होती है वो 30, चौड़ाई 30 और गहराई 12 फिट से लेकर 100 फिट, 100 फिट लंबाई, 100 फिट चौड़ाई और 10 फिट गहराई तक का साइज बनाया जा सकता है। ये बलराम तालाब योजना की योजना में आता है कि इतने साइज का हम फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। और इसकी पात्रता के लिए लेकिन जो शर्तें सरकार ने रखी हैं, वो पहली शर्त ये है कि किसान भाइयों की खुद की जमीन होना चाहिए और लगभग वो 1 हेक्टेयर तक तो होना ही चाहिए, इससे कम होगी तो उनको अनुदान नहीं मिलेगा। दूसरी
0: मतलब
1: शर्त
0: जसो जो भी किसान भाई का अपना खेत में तालाब बनाऊं तो ओका लिए
1: जी
0: ओका पास खुद की जमीन होनी चाहिए, ये बात ध्यान
1: बिल्कुल,
0: रखना पड़ेगा।
1: ये बात ध्यान रखने लायक है।
0: अच्छा
1: दूसरा दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहले उन्होंने कभी लाभ ना लिया हो। किसान को एक ही तालाब पर अनुदान मिलता है, दूसरे
0: अच्छा
1: तालाब अगर उसको बनाना है तो अनुदान नहीं मिलेगा। तीसरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनको जगह जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो जगह कहाँ है, तो खेत का निचला हिस्सा जहाँ बरसात का पानी आता हो
0: हाँ
1: और वो लगभग 50 मीटर दूर हो जहाँ पे हमें बनाना है खेत तालाब। इस योजना को मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ये
0: अच्छा
1: बहुत ही लोकप्रिय जल संरक्षण योजना है जो कि 2007 में शुरू की गई थी।
0: तो ये तो आपने बताया कि कितो खर्चो लगा, न सरकार द्वारा अनुदान भी मिला, न
1: जी
0: जसो कई अपना जो भी किसान भाई से उनका अपना खेत में ही तालाब बनानु, तो एका
1: जी
0: लिए अपना जो किसान भाई से वो आवेदन कहाँ करी सकज?
1: आवेदन के लिए किसान ग्राम पंचायत, ब्लॉक या उद्यानिकी विभाग कार्यालय या फिर एमपी ऑनलाइन कियोस्क में फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जानकारी मैं देना चाहूंगी, इसमें कागज जो कभी कभी किसान भाइयों के पास नहीं मिलते हैं,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: ये है कि उनको उनको रखना पड़ेगा, अगर वो अगर इसमें हम आवेदन करने जा रहे हैं वो, तो उनको खसरा खतौनी बुक रखना पड़ेगा। दूसरा आधार कार्ड भी चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, पासपोर्ट फोटो और शपथ पत्र भी लगेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि किसान जैसे ही फॉर्म जमा करते हैं तो सबसे पहले पटवारी और उद्यानिकी अधिकारी खेत का निरीक्षण करते हैं कि किसान का ही खेत है वो कि नहीं है, उनके दस्तावेज जो है वो पूरे हैं कि नहीं है। ये सारे के सारे निरीक्षण जब पटवारी और उद्यानिकी अधिकारी कर लेता है, फिर स्वीकृत होने के बाद 50% की जो राशि है, जो अनुदान सरकार देती है, वो उनके खाते में आएगी। दूसरा, जब खुदाई पूरी हो जाती है तो उनको जियोटैग फोटो लेनी पड़ेगी और वो देनी पड़ेगी ताकि उनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू रहे और बचा हुआ जो भी राशि है वो उनके अकाउंट में चला जाएगा। इसके लिए समय की अवधि का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि मानसून से पहले वो फॉर्म को जमा कर दें ताकि मई जून में वो पूरा जो भी उनका जितनी भी प्रक्रिया चलती है वो हो जाए और जुलाई में फार्म की खुदाई हो जाए और पहली बारिश के पहले वो पानी को रोक सके। तो ये एक पूरी प्रक्रिया चलती है कि इतने तक हमें रोकना है तो बारिश के पहले तक वो बन के तैयार हो जाना चाहिए।
0: जैसो कि आपने बताया कि आवेदन हमारे का कौन कौन सा कागज होना चाहिए, किस प्रकार से आवेदन करी सकल, न
1: जी
0: खेत तालाब को मुख्य उद्देश्य का ही रजिका मई सब बात का पीछे?
1: मैम, सबसे जो कहना चाहिए इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि ये जीवनदायी सिंचाई देता है। मतलब मानसून में पानी जमा कर लेते हैं और सूखे वाले क्षेत्र में जब भी फसल को जरूरत होती है उसकी जरूरत के हिसाब से पानी सिंचाई के लिए।

0: दे दिया जाता है, कम से कम 1 से 2 ये जीवनदायी सिंचाई दे सकता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इसका उद्देश्य ये है कि ये भूजल रिचार्ज भी करता है, जो मैंने पहले भी बताया। का पानी धीरे धीरे जमीन में जाता है, रिस रिस कर जाता है, और वहां जाके वो संचयन हो जाता है उसका, और जो हमारा वाटर का स्तर है वो भी बढ़ता चला जाता है। तीसरा है, सतही वाटर को रोकता है ये, तो जो खेत में जो उपजाऊ मिट्टी रहती है वो बहकर ना जाए, क्योंकि पानी का बहाव जैसे ही बढ़ेगा खेत की मिट्टी बहती चली जाएगी, इसीलिए सतही बहाव को भी रोकता है, तो खेत की उपजाऊ मिट्टी वहीं की वहीं बनी रहती है और खेत भी हमारे उपजाऊ रहते हैं। चौथा है कि अतिरिक्त आमदनी हम इससे कर सकते हैं, मछली पालन हो गया, सिंघाड़ा का उत्पादन हो गया, बतख पालन है, और इत्यादि उपयोग हम इससे कर सकते हैं। हमने वो अपने खेत में रोक लिया, हम इसको आसपास के घरों के पास भी बना सकते, छोटे खेत तालाब भी बनाया जा सकता है, पर हम खेत तालाब कह रहे हैं तो खेतों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है ये। पांचवा है कि पशु या घरेलू उपयोग में भी ले सकते, उनकी जरूरत के हिसाब से वो हमारा और पहले से ही संचयन हो चुका है, उसकी जब भी जरूरत है तो हम पशुओं और घरेलू उपयोग के लिए भी ले सकते। जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे आपको बार फोकस करना चाहती हूँ वो है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे हम खेत तालाब बनाते हैं तो भूमि की उर्वरता बनी रहती है, और भूमि की उर्वरता बनी रहेगी तो मिट्टी और जल संरक्षण भी बना ही रहेगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार हमारा किसान भाई अपना खेत में तालाब बनाड़ी न पानी को संचय करी सकज न आगे पानी को उपयोग करी सकज। तो डॉक्टर नीलम बुनकर, आपने हमारा कार्यक्रम का माध्यम से किसान भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी न, जो हमारा किसान भाई छे इन्हीं चर्चा को लाभ जरूर लेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: भाई बहना, अभी अपन खेत तालाब खेती को वरदान और पानी की बचत विषय पर भेंटवार्ता सुनी, जिकमा डॉक्टर नीलम बुनकर से जानकारी ली रही थी बेन तुलसा दरगैया। भाई बहना, आज की इन बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हुईगी कि भाई पानी की एक एक बूंद का सहेजनो अब हमारी जरूरत नहीं है बल्कि हमारो फर्ज भी है। खेत में तालाब बने न हम न सिर्फ अपनी फसल का नयो जीवन दे सकता है बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका लिए पानी भी सुरक्षित कर ही सकता है। अब मन करी रहे कि कार्यक्रम में एक लोकगीत और सुनी ला, तो सुना अपन एक लोकगीत जिका गायो है बेन स्नेहा गहलोत और साथी नान।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई बहन इना सुहावना मौसम मेवलो बर्स अपन जो लोकगीत सुनियो वो गायो थो बेन स्नेहा गहलोत और साथी नाना। अब कार्यक्रम में अपन जानिला आज का मंडी का भाव। भाई बहन कृषि उपज मंडी समिति संयोगिता गंज इंदौर में आज तिल्ली को भाव रियो 9405 रुपया प्रति क्विंटल, यो एकज भाव रियो है। मसूर को भी एकज भाव रियो आज 4795 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना को न्यूनतम भाव रियो 5300 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रियो है 9465 रुपया प्रति क्विंटल। मिर्ची को भाव रियो 12500 सलीन 13500 रुपया प्रति क्विंटल। अना सरसों को भाव रियो है 6400 रुपया प्रति क्विंटल। अना मटर को भाव रियो न्यूनतम 2530 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम रियो 3800 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को भाव रियो 1580 रुपया सलीन 3070 रुपया प्रति क्विंटल और मक्का को भाव रियो है 2081 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम और अधिकतम रियो है 2173 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा को भी एकज भाव रियो 8465 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रियो है आज 4305 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रियो है 7100 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को भाव रियो है 2495 रुपया सलीन 6635 रुपया प्रति क्विंटल। अना चना को भाव रियो 4590 रुपया न्यूनतम और 6405 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव रियो है। अब और अपना अंत में जो है मूंग को भाव रियो 3505 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रियो है 6905 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो था अपना आज का अनाज।

मंडीज का भाव। और भाई बहना, क्योंकि अब जो मौसम है, बारिश को मौसम है, एक माह अपन खेत आड़ी जाए आए आसामा खेत आड़ी भी जो अपना झाड़ झड़ूक लेना अब बड़ा हो गया है। चारी तरफ हरियाली जरूर है, पर इन्हीं चीज को भी अपना ध्यान रखना है कि कोई भी काम काज जब अपन करा खेत को खेत आड़ी जावा तो उना समय जो जन जनावर रही है इनको भी अपना डर रही है। तो आसामा काम जब भी अपना करना है तो सावधानी का साथ करना है और थोड़ो देखी भालीन करना है। बात अपन अभी और भी करांगा, पर मन करी रही हो कि कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनीला। तो सुना अपन भाई फतेह सिंह परमार राही को गायो यो प्यारो सो लोकगीत।

भाई बहना, और क्यों नहीं ना, मौसम में अभी अपना चारी आड़ी लोग की न गिल की न बिल्कुल जान में उनमा के कहीं यो चली रहे है कि भाई कौन पहला बिका कौन सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन बिका गो, तो यह सब तो चलते रहेगो। पर इकमा आपा जो है जुलाई महीना को अंत होने वाला है और अगस्त की शुरुआत होने वाली है और दुनिया भर में भाई बहना एक बहुत ही खास और जरूरी हफ्ता की तैयारी ना भी चली रही है। जी हाँ, हूँ बात करी रही है 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह की। यो हमारे याद दिलाए कि एक नन्हा शिशु की जिंदगी का सबसे मजबूत शुरुआत कैसे की जाए। भाई बहना, इना साल की थीम है जीवन की टिकाऊ शुरुआत का लिए स्तनपान जो प्रभावी है उका मजबूत करना है। अब तुम सोच ही रहा होगा कि इको कई मतलब है। इको साफ मतलब यो है कि भाई बच्चा का दूध पिलानो सिर्फ एक माँ की अकेला की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारा अपने जो माता ना है, जो नौकरी पर जाए, खेत ना में काम करे, घर में दफ्तर में काम करे है, उनका अपना एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देनो जहाँ वे बिना किसी हिचकिचाहट का अपना बच्चा का दूध पी ले सका, और इन्हीं व्यवस्था का हमार सबका मजबूत करना है। भाई बहना, यो अपना सबका अपन जानना सही कि माँ को पहलो गाढ़ो दूध बच्चा का लिए अमृत का समान है जो जिंदगी भर उनका तरह तरह की बीमारी ना से बचावा। डिब्बा वाला जो दूध ना रहे उनका चक्कर में पड़ना से हम सही पोषण उनका नहीं दे पाए, क्योंकि जो ममता माँ का आंचल में है वह कोई डिब्बा में बंद नहीं हो सकती। तो भाई बहना, अपना इना सप्ताह को इना जो यो अभियान है इको हमारा एक हिस्सों बनना है और हमारी जो भी भाई बहना है उनका हमार सम्मानजनक उनका अधिकार देना है और उनका साथ भी देना है। और अब कार्यक्रम कि जो घड़ी है वाकी रही कि भाई कार्यक्रम को बखत हुई चलो है, तुम्हारी बात का बहु न्याज दू विराम। सब किसान भाई बिरना का प्रियंका की राम राम।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए

ये एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नपत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी।
विपक्षी सांसदों खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के

सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया पाठक और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हेपेटाइटिस, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण, डिजिटल निगरानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद श्रेया।
3: डॉक्टर एन के अरोड़ा, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या और इसे साइलेंट किलर या साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है।
4: हेपेटाइटिस का एक प्रकार है विषाणु का जो साइलेंट किलर होता है, और एक दूसरा प्रकार है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। तो हेपेटाइटिस को याद रखना, ये वायरस डिजीज है या विषाणु की वजह से होती है, और मुख्यतः चार विषाणु है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। डी इतना नहीं है महत्वपूर्ण, ई होता है। ए, बी, सी और फिर ई, ये चार किस्म के वायरस हैं जो हमारे जिगर को, यकृत को प्रभावित करते हैं, लिवर को, और उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, वो एक बार हमारे शरीर में, खास तौर पे जब उम्र छोटी होती है, 5 साल से कम उम्र में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो वो फिर निकलता नहीं है और वहीं पे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी, हम आगे बात करेंगे, एक बार शरीर में घुसता है तो बाहर जाता नहीं है, और वो हमारे लिवर के जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है, डैमेज करते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारा जो यकृत है, लिवर है, उसमें खराबी होती है। पहले तो हमें, अगर बहुत देर तक चलता है तो पीलिया हो सकता है, लेकिन कई बार पीलिया भी नहीं होता, सीधे सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, और फिर बाद में कैंसर भी हो सकता है। तो इन दो वायरसेस की वजह से जो लिवर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है या सूजन आ जाती है, वो एक साइलेंट किलर का काम करती है, क्योंकि 10 से 20 साल 30 साल बाद आपको पता भी नहीं चलता है, और पता सडनली पता चलता है कि हमारा लिवर इतना खराब हो गया है कि खून की उल्टी आ रही है और उसके अंदर शरीर लिवर के अंदर गांठें हो जाती हैं और परेशानी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं कुछ लोगों में से कैंसर भी हो जाता है, जिसको हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये दो वायरस जो है एक तरह से हमारे लिए साइलेंट किलर है, और ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है, क्योंकि एशिया में और खास तौर पे भारत में, शुरू में हमने जब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था तो एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या थी जिसमें हेपेटाइटिस बी सर्कुलेट करता रहता था, और ये जो हमारे हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस है, उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता था। समय के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो अब इसमें कमी आ गई है। दूसरा, हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई स्वच्छता की कमी की वजह से होता है, चाहे वो स्वच्छता पानी की हो या स्वच्छता भोजन की हो, इन दोनों की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और ये आपको जानकर एक सुखद अनुभव होगा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू करने से जब घर घर में जो पानी पहुंचा है, स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कम हो गए क्योंकि हमें साफ पानी मिलने लगा, भोजन में भी सफाई हो गई स्वच्छता की वजह से। वो जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है उसमें पीलिया हो जाता है, किसी भी उम्र में हो पीलिया होता है और आमतौर पे दवाई किसी की जरूरत नहीं होती है, खाली देखभाल करनी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। किसी किसी केस में यानी कि 200 केसेस में एक केस ऐसा होता है जिसमें लिवर फेलियर हो सकता है और मृत्यु की संभावना बनती है
3: जी।
4: तो वो एक अलग तरीके से फैलता है और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक अलग तरीके से फैलता है और साइलेंट किलर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होते हैं
3: जी। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आज सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि इन नए दिशा निर्देशों में क्या बदलाव किए गए हैं और इनसे आम लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है।
4: इन गाइडलाइन में जो मुख्य इनका बिंदु है जिन पे हमें समझने की जरूरत है और वो ये है कि 2030 तक हमें जो हेपेटाइटिस है, जो लिवर की बीमारी है, उसको बहुत हद तक खत्म करना है और कम करना है। और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो एक बार शरीर में घुस जाते हैं जैसे हमने बताया और लगातार रहते हैं, तो उनकी जांच का, उनके इलाज का और साथ ही साथ उनको फॉलो करने का, ये सारा का सारा जो इस नई गाइडलाइन के अंदर है और स्पष्टता से बताया गया है और अब हर एक सरकारी स्थान पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास तौर पे इस समय तक जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी जांच हो रही थी, लेकिन अब लगातार जैसे कि पहले करीब 21 करोड़ लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जांच पूरी करनी है जिससे कि कोई भी व्यक्ति

0: जो हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित है जल्दी बीमारी अधिक बढ़ने से पहले पकड़ा जा सके, क्योंकि आज इनका इलाज उपलब्ध है। एंटीवायरल ड्रग्स हमारे देश में उपलब्ध है, यहीं पे उनका निर्माण होता है, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता और वो बहुत ही प्रभावी दवाई है, तो इलाज किया जा सकता है और जिससे कि सिरोसिस से बचा जा सके और जिससे जो कार्सिनोमा कैंसर है लिवर का वो उससे बचा जा सके।
1: तो जैसा कि पहले उत्तर में आपने बताया कि किस प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस के, जैसे हमें पता है कि 5 प्रकार बताए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से भारत के लिए सबसे बड़ी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है वो कौन से प्रकार के हेपेटाइटिस से होती है और क्यों?
0: हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसमें से 4, हेपेटाइटिस डी इतना कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया कि ए और ई पानी के दूषित होने से या भोजन के दूषित होने से होता है। जिस तरीके से डायरिया या दस्त की बीमारी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा वातावरण में स्वच्छता आती है, चाहे वो पानी की है, भोजन की है, और जैसे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हुआ, हर घर जल वाला कार्यक्रम आ रहा है, उसकी वजह से सचमुच इन चीजों में बहुत कमी आई है। कुछ साल पहले तक, यानी मैं कहूंगा 10-15 साल पहले तक, हर थोड़े दिन में पता चलता है देश के किसी हिस्से में हेपेटाइटिस ई का खास तौर पे आउटब्रेक्स या एपिडेमिक होता था। और ये जो है इसकी वजह से बहुत सीवियर बीमारी होती है, और खास तौर पे अगर गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन दोनों के लिए तो सफाई का है। हेपेटाइटिस बी और सी का होने का जो तरीका वो है, बी जो है मां से बच्चे, अगर गर्भवती महिला में हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जीवन के पहले 5 सालों में अगर एक दूषित सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ब्लड दिया जाता है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें से 70-95% संभावना होती है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी उस बच्चे में हो जाएगी और वो फिर वायरस बाहर निकलता नहीं। हेपेटाइटिस सी जो है दूषित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल से होता है खासतौर पर, ज्यादातर एक आम समझ के लिए ये जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ध्यान करना है, एक तरफ तो हमें खाने की और पीने की सफाई रखनी है और उसमें खास ध्यान रखना है, दूसरी तरफ जब भी इंजेक्शन लग रहा हो तो हमें देखना है कि नई इंजेक्शन और नई नीडल का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे लिए। दूसरी उतनी महत्वपूर्ण बात है कि इंजेक्शन तभी लगाया जाए जब अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा, हमारे द्वारा किया गया, कि लगभग 60-75% समय हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं हो बिना, क्योंकि आजकल ओरल दवाइयों से पूरा लाभ वैसे ही मिल जाता है। तो इंजेक्शन की कमी होनी चाहिए, इंजेक्शन कम से कम होने लगने चाहिए, और जब इंजेक्शन लगाना पड़े तो नए इंजेक्शन और सिरिंज होने चाहिए। और ब्लड सैंपल जब भी चढ़ाया जाए, जब ब्लड किसी को चढ़ाने की जरूरत है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता इस बात को अपने डॉक्टर से या अपने चिकित्सा कर्मी से पूछे कि भैया इसमें हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी की जांच हो गई है कि नहीं हो गई। अब गर्भवती महिलाओं में आजकल जो है प्रसव से पूर्व जो जांच होती है उसमें हेपेटाइटिस बी की पूरी जांच की जाती है, और अगर हेपेटाइटिस बी मां को है तो उसका इलाज तो अलग से करना होता है जब प्रसव हो जाता है, लेकिन प्रसव के 24 घंटे के अंदर ही अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण बच जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 साल से कम अगर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसी बच्चे में हो, खास तौर पे नवजात शिशु में और पहले साल में, तो लगभग 95% संभावना है कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसको मैं टीका लगा दूं तो फिर टीके से बचाव हो जाए।
1: जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया था, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिला है और कैसे उनके लिए एक सुविधाजनक इलाज सरकार ने दिलवाया?

0: का टीका लगा दिया जाता है। तो इस टीका लगा जाने से अगर मां को हेपेटाइटिस बी है भी तो हमारे बच्चे को उससे बचाया जा सकता है और बच जाता है। और इसका फायदा ये हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाने से समय के साथ जहां हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के 2-3% लोग संक्रमित थे वो अब 1% से कम लगभग 0.85 और 0.9% जो है वो प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो लगभग 0.3%, यानी कि अगर मैं कहूं कि 1000 में 3 बच्चे जो हैं, 3 व्यक्ति जो हैं हेपेटाइटिस सी, और ये खास तौर पे संक्रमित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल और खास तौर पे इंजेक्शन की वजह से होता है, तभी मैंने कहा कि इंजेक्शन। तो अब ये जो कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम हर एक सरकारी चिकित्सा संस्था है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच उपलब्ध है आज की डेट में। वहीं हाथ के हाथ आपकी जांच हो जाती है और उससे एक बार जांच हो जाए तो उसके हिसाब से फिर ध्यान किया जाता है और साथ में इंजेक्शन के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता
1: है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पहचान और इलाज संभव है। सरकार मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन जागरूकता, समय पर जांच और लोगों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आपका हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बलमा फिल्म के इस प्यारे से गीत से। युगल स्वर आशा भोसले और कुमार सानू के, समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत।

0: बलमा फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, जिसे गाया था आशा भोसले और कुमार सानू ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: समीर की शब्द रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आपने सुना। जी हाँ, फिल्म का नाम क्योंकि मैं। और श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज 8:09 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर

0: मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले छह दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
6: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पर सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
7: राज्यों की यात्राओं के द्वारा युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
9: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रूपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की।

0: अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविन्द्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। यह एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Mascar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their

0: बंजारन। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। युगल स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, शब्द रचना पंडित मधुर की थी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना राहुल देव बर्मन का संगीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म मेला में। श्रोताओं आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। अगले गीत से पहले लीजिए सुनिए यह संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मिस्टर एंड मिसेस 55, यही है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत ओपी नैयर का।

मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, ओ पी नैयर का संगीत, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में आबशार गज़ल सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे ज़हनी सेहत की अहमियत के बारे में, और साथ ही लुत्फ अंदोज होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की गज़लों से। दोस्तों, मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत से मुराद किसी शख्स की जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी बहबूद है। ये इस बात पर असर अंदाज होता है कि एक शख्स किस तरह सोचता है, महसूस करता है और बर्ताव करता है, और ये इस बात का तायुन करने में भी किरदार अदा करता है कि कोई शख्स किस तरह तनाव का मुकाबला करता है, दूसरों से ताल्लुक़ रखता है और इंतखाब करता है। मजबूत ज़हनी सेहत किसी शख्स की अपनी सलाहियत को पूरा करने, नतीजा खेज काम करने और अपने समाज में बामानी शराकत करने की सलाहियत से नुमाया होती है। दोस्तों, दिमागी सेहत एक पेचीदा और मुतहर्रिक तसव्वुर है, और ये जेनेटिक्स, माहौल, ज़िंदगी के वाक़यात और ज़ाती तजुर्बात समेत मुतअद्दिद अवामिल से मुतासिर हो सकता है। ये समझना अहम है कि ज़हनी सेहत भी जिस्मानी सेहत की तरह ही ज़रूरी है, और अगर आप या आपके जानने वाले किसी ज़हनी सेहत की हालत की अलामत का सामना कर रहे हैं तो मदद लेना ज़रूरी है। मुनासिब इलाज और मदद के साथ दिमागी सेहत की दुश्वारियों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। सामईन, अच्छी दिमागी सेहत किसी शख्स की मजमूई जज्बाती बहबूद और खुशी में हिस्सा अदा करती है। ये एक शख्स को मुसबत जज्बात का तजर्बा करने और मुश्किल या दबाव वाले हालात से निमटने में मदद करता है। दोस्तों, जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत का गहरा ताल्लुक है। दायमी तनाव और दीगर ज़हनी सेहत के अमराज जिस्मानी सेहत के मसाइल जैसे सरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर और कमज़ोर

इम्यून सिस्टम का बाइस बन सकती है। सामईन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा प्रोग्राम आबशारे गज़ल गज़लों से सजा होता है। तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

सामईन, अभी आप गुलूकार अनूप जलोटा की आवाज में गजल सुन रहे थे। दोस्तों, हमारी बातचीत का मौजू था जहनी सेहत की अहमियत के बारे में। अच्छी जहनी सेहत दूसरों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात बनाने को बरकरार रखने के लिए अहम है। ये एक शख्स को मुअस्सर तरीके से बातचीत करने, करीबी ताल्लुकात बनाने और तनाज़ुआत को तामीरी अंदाज में हल करने की इजाज़त देता है। एक शख्स की मुअस्सर तरीके से काम करने, पैदावारी और ज़रखेज़ी होने की सलाहियत के लिए दिमागी सेहत ज़रूरी है। दिमागी सेहत की बीमारियां काम पर और ज़िंदगी के दीगर शोबों में एक शख्स की अपनी बेहतरीन कारगर्दगी का मुजाहिरा करने की सलाहियत में मुदाखलत कर सकती हैं। एक शख्स के लिए एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी जहनी सेहत ज़रूरी है। ये एक शख्स को खुशगवार सरगर्मियों में मशगूल होने, अहदाफ तय करने और हासिल करने और मकसद व मानी को महसूस करने की इजाज़त देता है। मजमूई तौर पर जहनी सेहत मजमूई सेहत और बहबूद का एक अहम पहलू है और इसे तरजीह देना और इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। दिमागी सेहत की मौजूदा हालत आलमी सतह पर एक बढ़ती हुई तशवीश है, क्योंकि जहनी सेहत की हालतों का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है। मुतअद्दिद अवामिल बशमूल वबाई अमराज, माशी मुश्किलात और समाजी तन्हाई सभी ने बहुत से ममालिक में जहनी सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बनाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 4 में से 1 फर्द अपनी जिंदगी के किसी न किसी मौके पर जहनी या आसाबी अवारिस से मुतासिर होंगे। इसके अलावा जहनी सेहत के हालात दुनिया भर में माजूरी की सबसे बड़ी वजह है।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार सुशील कुमार की जादुई आवाज में गजल समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी बातचीत का मौजू था जहनी सेहत की अहमियत के बारे में। जहनी सेहत के मसाइल के कामयाब इलाज के लिए इब्तदाई मदाखलत बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को दिमागी बीमारी की अलामात का इल्म हो तो वो जल्द मदद ले सकते हैं, जिससे उनकी सेहतयाब होने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, दिमागी सेहत मजमूई सेहत का एक अहम पहलू है और जहनी बीमारी किसी शख्स की ज़िंदगी पर नुमाया असर डाल सकती है। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से लोग अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले कर सकते हैं। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से दिमागी सेहत के मसाइल को हल किया जा सकता है और इससे लोगों को मदद और तफहीम फराहम करने का इम्कान ज़्यादा होता है। जो जहनी बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, मजमूई तौर पर जहनी सेहत के बारे में बेदारी में इजाफा अफराद और कम्युनिटीज़ की जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश का, जिसमें हम सुनेंगे गुलूकार सुशील कुमार की आवाज़ में एक और खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

सामईन, अभी आप गुलुकार सुशील कुमार की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम कहकशां यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। तो चलिए अब आप हमारा पता नोट कीजिए। उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। अब आपके रेडियो दोस्त जावेद को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हेपेटाइटिस और अन्य लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अमित अग्रवाल हेपेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर प्रसारित होगा। इसे आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ही सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो सुनना न भूलें हमारा ये कार्यक्रम। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, हम उपस्थित हैं आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों के संग।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत से। जिसे हमने लिया है अर्चना फिल्म से। लता मंगेशकर का सुमधुर स्वर है।

0: नीरज का संग, नीरज की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अर्चना में। पसंद आप सभी श्रोताओं की शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। पुणे से पंकज वड़ोदे, आर्या आदि, बीटी वड़ोदे और चंद्रप्रभा वड़ोदे भी यही गीत सुनना चाहते थे। इंदौर से इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी अनिल केथवास, नेहा, सीमा, सबीहा, कमल, पूजा, सुषमा, स्मिता और इनके परिवार के सभी सदस्यगणों ने। देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सल्लू, देवास से ही मनीष वर्मा, मुरालीलाल वर्मा और कमल निगम भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही इस गीत को पसंद किया देवास से नवीन वर्मा, चेतन वर्मा, सचिन जोशी, हरिराम माली, कपिल माली और निरंजन माली ने। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनाया अर्चना फिल्म का ये गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओ, मन भवन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं दो रास्ते फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और लक्ष्मीकांत परेलाल का संगीत।

आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म दो रास्ते में। पसंद आप सभी श्रोताओं की। बहरामपुर टेमा से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, ईशिका और अंजलि श्वेता वर्मा की। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग भी यही गीत सुनना चाहते थे। सनावत से इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया ने। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण भी यही गीत सुनना चाहते थे। मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल ने भी इसी गीत को पसंद किया था। संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्रजक्ता, प्रांजलि और सोहम बारगांवकर ने भी इसी गीत के लिए हमें खत लिखा था। प्रमिलागंज आलोट से राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, ज्योति, मांगीबाई और मंगला राठौर भी यही गीत सुनना चाहते थे। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। मन भवन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दर्द फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। शब्द रचना नक्शलाल पुरी की है और संगीत खय्याम का।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म दर्द में। गीत रचना नक्शलाल पुरी की थी और संगीत खय्याम का। इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। मोर्टेका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और एकांश गवाणकर भी यही गीत सुनना चाहते थे। बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर ने भी इसी गीत के लिए हमें खत लिखा था। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणीता गवाणकर भी यही गीत सुनना चाहते थे। इंदौर से इस गीत को पसंद किया लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी भी यही गीत सुनना चाहते थे। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो सिद्दीकी ने भी इसी गीत को पसंद किया था। ग्राम पंजोनिया, ज़िला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और आलोकिक चांसोलिया भी यही गीत सुनना चाहते थे। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुषी बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने भी इस गीत को पसंद किया था। खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार, दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े भी यही गीत सुनना चाहते थे। छेगांव देवी, जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे,

झंवर वाघे, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने भी यही गीत के लिए हमें खत लिखा था। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनवाया दर्द फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सर में ये प्यारा सा गीत।

खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका पंचोली, नंदिनी, निखिल और गौरांज पंचोली ने भी इस गीत के लिए हमें खत भेजा था। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर भी यही गीत सुनना चाहते थे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनाया जब जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भवन आकाशवाणी का। ये इंदौर केंद्र शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए विदुषी श्रुति साड़ौलकर का गाया राग नाई की कानड़ा।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी श्रुति सिलोड़कर का गायन, राग था नाई की कांडड़ा। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।

भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।